नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 24 सितंबर 2026, दिन वीरवार, भद्रपदा शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर।

हित का भाव रखने वालों ने हर हालत में शीतलता बांटने का ही कार्य किया है। हमें चाहे कितने ही नफरत फैलाने वाले क्यों न मिल जाए, हमने अंगार नहीं बन जाना। हमने जलती हुई आग को थामने के लिए पानी का, बरसात का रूप बनना है। हमने उस अवस्था को बनाए रखना है।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रति

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनहरे पल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आज का ये खास प्रोग्राम हमारे सबके प्रिय सिंगर महेंद्र कपूर जी को समर्पित है। महेंद्र कपूर जी ने अपनी सुरीली आवाज से हमें कई यादगार गाने दिए हैं जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महेंद्र कपूर के गानों का ये सफर।

महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। गायकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने जल्द ही अमृतसर से मुंबई का रुख लिया। बचपन से ही महेंद्र कपूर महान गायक मोहम्मद रफी से बहुत प्रभावित थे। वे एक तरह से मोहम्मद रफी के शागिर्द थे और उनके प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। शायद यही वजह है कि कई बार उनके गानों में, खासकर शुरुआती दौर के उनके गानों में, रफी के प्रभाव की साफ झलक मिलती है। उनकी दिली इच्छा थी कि वह हिंदी फिल्मों में गाए। शुरुआत में महेंद्र कपूर ने शास्त्रीय संगीत की तालीम प्राप्त की थी। उनके जीवन में प्रमुख मोड़ उस समय आया जब उन्होंने मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया गायन प्रतियोगिता जीती। 1957 में हुई इस प्रतियोगिता के जज संगीतकार नौशाद अली थे, जिन्होंने फिल्म सोहनी महिवाल के गीत चांद छुपा है और तारे डूबे को महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड किया। इसके बाद उनको वी शांताराम की फिल्म नवरंग में गाने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने आधा है चंद्रमा रात आदि गीत गाया, जो कि कामयाब रहा। सी रामाचंद्रन के संगीत से सजे इस गीत ने महेंद्र कपूर के पांव फिल्म जगत में मजबूती से जमा दिए।

महेंद्र कपूर अपने स्कूल के दिनों से ही रफी साहब के साथ थे। उस समय रफी साहब इंडस्ट्री में सबसे बड़े नामों में से एक थे। रफी साहब और महेंद्र कपूर के बीच रिश्ता कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो मोहम्मद रफी की कहीं किसी भी बात को मानने से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार रफी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा था कि हम दोनों साथ में गाने नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी आवाज मिलती है। उस दिन से ही दोनों ने कभी साथ गाना नहीं गाया। दोनों ने सिर्फ 1968 में आई फिल्म आदमी का गीत कैसी हसीन आज बहारों की रात है, इस गाने में दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब के कहने पर महेंद्र कपूर ने तलत महमूद साहब की आवाज को डब किया था। ये गाना पहले रफी साहब और तलत महमूद को गाना था, लेकिन किसी वजह से गाने में तलत महमूद वाले हिस्से को नए गायक के साथ डब करना पड़ा और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री रफी साहब और महेंद्र कपूर ने साथ में अपना पहला और एकमात्र गाना गाया। दोनों के बीच हुए इस पूरे किस्से का खुलासा महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने किया था।

इसके बाद उन्होंने भरत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार और बी आर चोपड़ा के बैनर तले बनी अधिकतर फिल्मों के गीतों के लिए भी आवाज दी। एक समय महेंद्र कपूर की आवाज भारत की जीवंत आवाज कहलाती थी। देशभक्ति गीतों का ख्याल आते ही सबसे पहला नाम उनका ही आता था। लेकिन चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए और किसी पत्थर की मूरत से गाने के उनके गानों में विविधता प्रदर्शित हुई। इसके अलावा वो पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने कई अंग्रेजी गाने रिकॉर्ड किए। यही नहीं, महेंद्र कपूर ने लगभग सभी भाषाओं में 25,000 से भी अधिक गाने गाए। कई गीत जो उन्होंने गाए वो सदाबहार हो गए। उनके गानों की दीवानगी ऐसी कि देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उनके गीतों के कायल थे। जिस फिल्म इंडस्ट्री में रफी, किशोर और मुकेश जैसे बड़े नाम थे, वहाँ खुद की एक अलग पहचान बनाना शायद महेंद्र कपूर ही कर सकते थे। महेंद्र यूं तो रफी का अपना गुरु मानते थे, लेकिन रफी के कहने पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की सीख ली और उसे बखूबी अपने गीतों में उतारा।

70 के दशक में महेंद्र कपूर बेहद लोकप्रिय थे। मनोज कुमार के लिए उनके गाए देशभक्ति गीत आज भी लोगों के दिलों में बेहद करीब है। प्रीत जहां की रीत सदा हो या मेरे देश की धरती, इन गानों ने देशभक्ति की भावना की जो नींव रखी वो आज भी कायम है। आज भी हर भारतीय जब इन गानों को सुनता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उमड़ आता है। महेंद्र कपूर को मनोज कुमार की आवाज भी कहा जाता है। मनोज कुमार ने खुद को जब दर्शकों के सामने राष्ट्रवादी नायक की भूमिका में पेश किया तो उनके इस छवि को पुख्ता करने का काम किया महेंद्र कपूर की आवाज ने। महेंद्र कपूर को 1968 में उपकार फिल्म के सदाबहार गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वैसे तो महेंद्र कपूर के जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन उनके कुछ किस्से बेहद मशहूर हैं।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रोग्राम सुनहरे पल जारी है। महेंद्र कपूर को हर मूड का गीत गाने वाला समझा जाता था। वो किसी भी तरह के गीत को बेहद ही सरलता और गंभीरता के साथ निभाते थे, चाहे वो देश में सबसे ज्यादा बजने वाला देशभक्ति गीत हो, या धर्म अधर्म की सीख देते महाभारत के गीत, या फिर प्यार में डूबे किसी प्रेमी के दिल की आवाज, या जिंदगी की कश्मकश में धीरे किसी शख्स के दिल की आह। हर गीत को हर तरीके गाने की कला था महेंद्र कपूर के पास। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीतों में आज भी वो जादू है कि उन्हें सुनते ही हर कोई उनकी आवाज को खुद की समझ गीत गुनगुनाने लगता है।

हमेशा मस्त नगमे सुनाने का वादा करने वाले महेंद्र कपूर अगले कई दशक तक संगीत प्रेमियों को अपनी आवाज से मोहित करते रहे। उन्होंने जब फिल्मी जगत में पदार्पण किया वह हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण काल था और पार्श्व गायकी में मोहम्मद रफी, मुकेश कुमार और हेमंत कुमार को टक्कर दी और उनके बीच राह बनाना कोई आसान नहीं था। ये एक कठिन चुनौती थी, लेकिन दुनके पक्के और पुरुषार्थ से बड़े कपूर ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि पार्श्व गायन की विविधता को नए आयाम भी प्रदान किए।

बी आर चोपड़ा से उनका साथ टीवी धारावाहिक महाभारत में भी रहा। धारावाहिक महाभारत के शीर्षक गीत को महेंद्र कपूर ने ही स्वर दिया था। धारावाहिक के प्रारंभ से ही महेंद्र कपूर की आवाज से सजे श्लोक आदि दर्शकों को टीवी के सामने बांधे रखने में बहुत सफल हुए। महेंद्र कपूर ने दादा कोंडके के लिए उनकी अधिकतर मराठी फिल्मों में भी गीत गाए। उन्होंने सी रामचंद्रन और पी नायर, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे विभिन्न संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी विशेष जोड़ी रवि के साथ बनी। उन्होंने रवि के साथ मिलकर कई हिट गीत दिए। इन गीतों में चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, नीले गगन के तले, तुम अगर साथ देने का वादा करो और किसी पत्थर की मूरत से आदि गीत शामिल है।

अपने लंबे कैरियर में महेंद्र कपूर ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1968 में उपकार फिल्म के गीत मेरे देश की धरती के लिए महेंद्र कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त 1964, 68 और 1975 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। देश विदेश में उन्होंने अनेक चैरिटी शो किए। सुनील दत्त और नरगिस के साथ सीमा पर तैनात फौजी जवानों के लिए उन्होंने कार्यक्रम दिए। भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान करके इस गायक का मान बढ़ाया। 27 सितंबर 2008 को 74 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से महेंद्र कपूर का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनके सदाबहार नगमे कानों में मिश्री गोलते हैं। आज भले ही महेंद्र कपूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जहां उनकी आवाज का जादू हमेशा बना रहेगा।

ये था आज का सफर महेंद्र कपूर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगले किसी कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 4। आज का कार्यक्रम आधारित था गायक महेंद्र कपूर पर। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की पेशकश।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो दस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
2: गणपति बप्पा मोरिया।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता। रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और एक बार आज फिर लघु कथाओं की श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। और लघु कथाओं की श्रृंखला के बीच में आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सीहोर से श्री धर्मराज देशराज की लिखी हुई रचना डॉक्टर बाबू। एक ग्रामीण दादा घासीराम ने शहर के प्रसिद्ध पेट के रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मदास के क्लिनिक के बाहर खड़े दरबान से पूछा, भैया जी डॉक्टर धर्मदास का अस्पताल यही है ना? वो बोला, हाँ दादा, क्या हो गया तुमको? घासीराम बोले, अरे 2-3 दिन से पेट दर्द कर रहा है, जरा डॉक्टर बाबू को बुला दो। तब दरबान बोला, दादा अंदर काउंटर पर 500 रुपए जमा करा के वहां से पर्ची ले लो, डॉक्टर साहब उस पे दवा लिख देंगे। घासीराम बोला, क्या 500 रुपया? भैया हम लोग तो पूरा परिवार दिन भर मजदूरी करके भी 500 रुपए नहीं कमाते, और यहाँ 2-4 मिनट के 500 रुपए? अरे भैया कुछ कम करवा दो ना। दरबान बोला, दादा हमारे डॉक्टर साहब सुबह से निकलते हैं, पहले सरकारी अस्पताल में जाते हैं, फिर दिन भर प्राइवेट नर्सिंग होम जाकर मरीज देखते हैं, कुल मिलाकर दिन भर में 100 मरीज देखते हैं, कोई उनसे मोल भाव नहीं करता। 100 मरीज यानी 50,000 रुपए रोज? अगर मुझ जैसे गरीब लोग से नहीं मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दरबान बोला, दादा ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं है, यहाँ हर आदमी एक दूसरे की लाश पर पांव रखकर आगे बढ़ रहा है, यहाँ दया धर्म की बातें बेकार हैं, यहाँ पैसा ही ईमान है। यह सुनकर घासीलाल ने काउंटर पर जाकर पर्चा बनवा लिया और डॉक्टर से 4 घंटे बाद उनकी जाकर कहीं मुलाकात हुई। सर्सरी जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, दादा आपके कागज पर मैंने आपका चेस्ट एक्सरे, आंखों की जांच, खून की जांच सब लिख दी है, उनको कराकर कल फिर चले आना। घासीलाल बोले, सर जी मुझे तो जरा सा पेट दर्द है, अब इसके लिए क्या जांच करा रहे हैं? अरे भाई दवाई लिख दूं ना, कल फिर गांव से आने जाने का खर्च, 3-4 घंटे फिर आपका इंतजार, कितना मुश्किल है आजकल इलाज कराना भी। डॉक्टर बोले, देखो दादा इलाज कराना है तो जांच तो कराना ही पड़ेगा, और हाँ जहां से मैं कहूँ ना वहीं से जांच कराना होगा। तब घासीलाल बोला, डॉक्टर बाबू पेट दर्द में एक्सरे, आंखों की जांच, खून की जांच कराना क्या जरूरी है? मुझे मालूम है जांच की राशि में से ना आपको भी कमीशन मिलता है, सर जी मुझे बख्श दें, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर बोला, अरे सभी गरीब हैं, मेरे पास कौन सी नोट छापने की मशीन है, मुझे भी तो रुपया कमाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। घासीलाल बोला, डॉक्टर साहब आप दिन में 50-60 हजार से ज्यादा कमाते हैं, और वो भी बिना टैक्स दिए, जबकि हम मजदूर आदमी आपको फीस ही देनी पड़ रही है इतनी, उसी में हमारी जान निकल रही है, आपने दवा की दुकान भी अपनी खोल ली है, और दवा भी ऐसी लिख के देते हैं जो कहीं और से ना मिले, आप ही की दुकान से मिले, और यहाँ भी कमाई, एजेंटों से मिली दवाओं का भी आपको विक्रय करना होता है, तगड़ी फीस लेनी है, अरे सब कुछ आपत्तिजनक है, क्या सोना चांदी खाते हो? दादा जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना तुम्हारा इलाज। तब घासीलाल बोला, ठीक है डॉक्टर साहब मेरे 500 रुपए वापस दिलवा दो, चूने की गोली खा लूंगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा लड़का था वो नहीं मान रहा था, तो मैं आ गया आपके पास, उसने कहा था कि डॉक्टर धर्मदास पेट का जादूगर है, मैं सब जादूगरी समझ गया हूं। तब डॉक्टर ने आवाज लगाई, मोहन ये दादा आ रहे हैं, इनकी फीस लौटा देना, जाओ दादा जाओ अपनी फीस दे लो बाहर से जाकर। घासीलाल ने काउंटर से अपने रुपए वापस लिए और फिर डॉक्टर के पास आकर बोला, डॉक्टर बाबू जा तो रहा हूं लेकिन एक बात सुन लो, मेरा बेटा
इनकम टैक्स ऑफिसर के यहाँ पर चपरासी लगा, तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति है, सब जांच करवा दूंगा। और हाँ, ये जो क्लिनिक के बाहर खड़े होकर लोगों को जागृत भी करूंगा, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। ये सुनते ही डॉक्टर साहब खड़े होकर घिसीलाल का हाथ पकड़कर बोले, अरे दादा आप बैठिए ना, आपको चेक कर लेता हूँ, दवा भी मुफ्त में दे दूंगा, कल तक तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप सच कहते हैं, मानवता भी कोई चीज है। और इस तरह से डॉक्टर ने धर्मराज से और धर्मराज ने डॉक्टर से अपना पीछा छुड़वाया। लेकिन दोस्तों, जो कर्म होते हैं ना, ये पीछा नहीं छोड़ते, इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों तक भी। इसलिए कोशिश करें, कर्म ऐसे करें ताकि हमको अपने कर्मों के ऊपर पछताना न पड़े। और ऐसी ही और शिक्षाप्रद लघु कथाएं सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना मनपसंद FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, हम बाला का अपना रेडियो। अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलता हूँ एक और नई लघु कथा लेकर। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।

0: ದೈಚು ಗೋಜಾನ್ 90.0 ರೇಡಿಯೋ ವಿತಸ್ತ ಹಮ ಸಫರ್ ಜಿಂದಗಿ ಹೊಂದ್.
1: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी. ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी. उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए. उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है. ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं. शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है. कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है. ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है. ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे. ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है. ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं. हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है. हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है. इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने. इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने. तो आइए सुनते हैं ललवा की ये श्रृंखला.
2: नमस्कार. ललदेद हुंद युसी वाह कुते वनन वोसो, ये बहुत ही क्रांतिपूर्ण और बहुत ही परिवर्तनशील ललवाक है. ललदेच वनन गोरन वन्नम कुने वचुन नेब्राई दोपनम अंदरे अचुन सुई गो लली में वाक्त वचुन तवे हुतुम नंगई नचु. यानी गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसके कारण से मैं बाहर से अंदर आई और वही अंदर आना मेरे लिए एक क्रांति का सबब बन गया और इसलिए लला अब एक नग्न रूप में नाच रही है. इस वाक को समझना बहुत जरूरी है. गुरु ने ऐसा क्या शब्द कहा? हमारी संस्कृति में एक शब्द ब्रह्म है जो अपने में ही एक पूरा ब्रह्मांड हम मानते हैं, और ललदेत को गुरु ने कुछ ऐसा शब्द कहा जिससे ललदेत के जीवन में बाहर और अंदर एक क्रांति खड़ी हो गई. जो लला बाहर थी वो लला अंदर चली गई, और जो अंदर चली तो उसे एक नई ही दुनिया दिखाई दी. यानी वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जब मुड़ी तो एक क्रांति उसके अंदर घटी. और यही लला कहती है तवई है तुम नंगई नसुन, यानी इसलिए वो नग्न अवस्था में नाचने लगी. ये नग्न अवस्था कपड़े उतरे हुए नग्न अवस्था नहीं, ये वो नग्न अवस्था है जहां पे हम सारे फसाद जिसके कारण से हम अंदर की दुनिया को छिपा के रखते हैं और बाहर की दुनिया में कुछ और दिखाते हैं, ये उस फसाद को तोड़ने की बात कर रही है. वो कह रही है मैंने वो सारी कंडीशन, सारे परसेप्शन, सारे बिलीफ, सारे आइडिया, सारे थॉट्स, सारे ऐसे जो जजमेंट्स उसके मन में थे जिसके कारण से एक आम आदमी दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उसने वो सारे कंडीशंस छोड़ दिए और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो विचारहीन, विचारलेस, थॉटलेस स्टेट है. और उस थॉटलेस स्टेट से उसे वो परमात्मा दिखाई दिया, उसे वो शिव दिखाई दिया. कितनी गहरी बात ललदेत हमें इस वाक से कहती है. मैं नीरजा जी से कहूंगा कि तो ये विद्यो यो है वाक पन्ने हाइटे تو یہ زن لوگ بوزن کہ ات واقعس مز تہ کت پٹھ سرسوتی ہیکان اس تام وات

नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे, मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख

पकड़ता, मुझे अपने साथ ले जाता पत्थरों के शहर में, जहां बरसों पहले मैंने तराशे थे। बोलते मुजस्सम और पत्थरों के खुदा, जिनकी इबादत में हर कोई है मसरूफ, और उठते ही सदा

मिट्टी के खिलौनों से खेलता था, दौड़ता था, भागता था, हंसता था, पेड़ों की टहनियों से झूला झूलता था। बारिश की बूंदों को अपनी कच्ची मुट्ठी में कैद करता था। सिर्फ एक बार लौटा दे मुझे मेरा बचपन, जो गलतियां हुई अब उनको न दोहराऊंगा, किसी से न रूठ जाऊंगा, किसी को न रूठने दूंगा, किसी से न शिकवा करूंगा और न किसी को शिकायत का मौका दूंगा, मगर मुझे लौटा दो मेरा बचपन, तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल, तुम्हारे नीले दुपट्टे के छांव तले गुनगुनाना चाहूंगा। तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में

किसकी सूरत अब इस शीशे में उतारूं? टूट गया आईना, टुकड़े टुकड़े हो गया, जुबां बंद हो गई।

पसरा है सन्नाटा। शायद फरामोश करना तुम्हारी आदत है, यूं ही पल पल

यहां के मखमली मौसमों की धूप और गुलाबी ठंड हो। हुस्न दिलकशी का हर जुज तुम्हारे दामन में पनाह लिए हुए अभी भी जाविदा है, जिंदा है, जमा है। यकीनन खूबसूरत हो तुम, सिर्फ तुम। कभी यूं भी तो हो, ये नर्म मुलायम हवाएं तुम्हें छू कर गुजरे और तुम आओ, तुम आओ मेरी भूली बिसरी यादों में शामिल तुम हो।

बरसातों में तुम भीगते रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, दूर से ही सही तुम्हें निहारता रहूं। चांद भी इन बादलों से चीर के निकल आया है तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए। गरजते बरसते ये बादल ये हवाएं तुम्हारे गेसों तुम्हारे रुखसार को छूने में है मुंतजर। चले आओ अपनी मुस्कुराहटों के संग, यहां खेले लुक्का छुपी और मुस्कुराए इन फिजाओं के साथ साथ।

बोलिए आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, जरूर बताइएगा। अब अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्ते।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

कहे रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सोई सांची मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सब ने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है। दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इन डीड।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है। सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं, ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच समझकर अन्य की ओर बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिसे बांट सके, वो व्यक्ति का मित्र होता है। मित्रता जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर तथा किसी से भी हो सकता है। एक पिता अपने पुत्र का मित्र हो सकता है, इसी तरह माँ बेटे में मित्रता हो सकती है, पति पत्नी में भी मित्रता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हम उम्र के लोगों के मध्य ही मित्रता हो। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। नुक्ताचीनी को मित्रता कहना अनुचित होगा। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होती है, जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पलों को व्यतीत करता है। सुविख्यात कवि रहीमदास द्वारा एक चर्चित दोहा में कहा गया, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पाए टूटे मुक्तहार। मतलब, सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है, ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तान, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यावसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरना लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे। फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहस, तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहस, तो गम क्या सर कटने का। ना होता घर जुदा तन से, तो जानू पर दरा होता। हुई मुद्दत के गालिब, मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब, मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता तो क्या होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी आज लेके आया हूं देश प्रेम से भरा एक और अंक प्रोग्राम सरफरोशी की तमन्ना का। और इस प्रोग्राम में हम हमेशा देश प्रेम की बात करते हैं, उन वीरों की बात करते हैं, उन जवानों की बात करते हैं जिनसे हमारा देश हमेशा सुरक्षित है। वो सीमा के रखवाली करते हैं, वो सीमा के प्रहरी हैं, वो वहां पर अपने घरों से, अपने बच्चों से दूर रह के सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम अपने घरों में आराम से सोते हैं। आज का ये प्रोग्राम सरफरोशी की तमन्ना समर्पित है हमारे वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को। आज हम बात करेंगे अभिनंदन वर्तमान की, एक ऐसे योद्धा जो अपने देश में शेर है ही है और उसने दुश्मन देश के अंदर भी अपना सिर ऊंचा रख के देश का सिर ऊंचा कर दिया। हम सब भारतीयों का गर्व से सिर ऊंचा है। विंग कमांडर अभिनंदन 36 साल के हैं। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए से स्नातक। भारत के तमिलनाडु से अभिनंदन, उनकी मूल जड़े थिरुपनामुर गांव से हैं। उनके माता पिता चेन्नई में रहते हैं। भारतीय वायुसेना में उन्हें 2004 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में चुना गया। उन्हें अपने 15 साल के करियर में 2 बार पदोन्नत किया गया। पहले उन्हें एक कुशल सुखोई 30 फाइटर पायलट का खिताब मिला। बाद में उनके युद्ध कौशल को देखते हुए उन्हें विंग कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया। उसके बाद उन्हें मिग 21 को सौंप दिया गया। अभिनंदन जाने माने पायलट एयर मार्शल सिमह कुट्टी वर्धमान के बेटे हैं। वो पूर्वी वायु कमान के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अभिनंदन बहादुर परिवार से आते हैं। उनकी पत्नी भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर भी रही है। उनके 2 बच्चे हैं। अभिनंदन की शुरुआत सैनिक कल्याण स्कूल चेन्नई से हुई है। अभिनंदन वर्धमान का जन्म 21 जून 1983 को तमिलनाडु में हुआ। उनके पिताजी का नाम सिमह कुट्टी वर्धमान है और माताजी का नाम शोभा वर्धमान। उन्होंने विवाह तन्वी मारवा से किया। 14 फरवरी

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व बल यानी CRPF के काफिले पर एक फिदायीन हमला हुआ। इसमें 40 सैनिक शहीद हो गए। देश अधीर हो गया था और प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। अगले क्रम के बारे में हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। आइए सुनते हैं एक देश प्रेम से भरा

आप सबका पुनः स्वागत है प्रोग्राम सरफरोशी की तमन्ना में। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे वीर योद्धा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के लिए। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना पाक अधिकृत कश्मीर गई और आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर को नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना के इस हवाई हमले में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर को नष्ट करते हुए उसके कारण पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को 27 फरवरी को अगले दिन सबसे घातक लड़ाकू विमान F-16 के साथ भारत भेजा। इसका जवाब देने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान सामने आए। उन्होंने अपने मिग 21 के साथ बहादुरी दिखाई और दुश्मनों पर प्रहार किया। भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमानों के जवाब में पाकिस्तान द्वारा भेजा गया F-16 गिरा, लेकिन दुर्भाग्य से भारत का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पायलट गायब हो गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना का एक पायलट उनके कब्जे में है। अभिनंदन वर्धमान ने जब अपना पैराशूट इजेक्ट किया तो वो पाक अधिकृत कश्मीर में थे। जब वे वहां उतरे तो हमने कुछ दृश्यों में देखा कि वहां के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें पीटने भी लगे। इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी के जवान ने अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें अभिनंदन के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उनके चेहरे पर खून था। अभिनंदन पाक आर्मी को अपना परिचय दे रहे थे। भारतीय सरकार ने कहा, इस वीडियो के दौरान पाकिस्तान जेनेवा संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें वे चाय पी रहे हैं और पाक आर्मी के कुछ अधिकारियों के साथ उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। जब जवाब देने की बारी आई, उन्होंने सिर्फ उतना ही बताया जितना बताना जरूरी था। और जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप किस मिशन से आए थे या किस मिशन से आपने अपने विमान को उड़ाया था, तो उन्होंने शेर के बांधे ये कहा कि मैं आपको ये नहीं कह सकती। यहां एक बात कहनी बहुत जरूरी है, जब उनको ये ज्ञात हुआ कि वो पाकिस्तान की धरती पर है और लोगों ने उन पे हमला बोल दिया, उन्होंने अपना पिस्तौल निकाला और हवा में फायर किया। किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर अपनी जान को बचाने के लिए ऐसा करते हुए वो वहां से भागे और भागते भागते वो एक तालाब में कूदे ताकि जो उनके पास जरूरी कागजात है उनको वो पाकिस्तान के हाथ नहीं लगना देना चाहते थे, और कुछ कागज ऐसे थे जो वो निगल गए। यहां से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने देश के प्रति अपनी जान से भी बढ़ के रखवाली करनी होती है, और हमें गर्व है उस विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पर कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगाया। इस योद्धा के बारे में हम और भी जानेंगे। आइए सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीतों में।

आप सुन रहे हैं अंबाला की आवाज और ये है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज हम बात कर रहे हैं हमारे शूरवीर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में कहा कि 1 मार्च को भारतीय जवान को रिहा किया जाएगा। 1 मार्च को रात लगभग 9:15 पाकिस्तान सेना ने अभिनंदन को भारतीय सेना को सौंप दिया। उन्हें अटारी वाघा बॉर्डर की ओर से भारत वापस पहुंचाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा एक और वीडियो चलाया जिसमें उन्होंने भारतीय मीडिया को बला बुरा कहा था, परंतु उस वीडियो में कुल 20 कट। वायुसेना ने कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की और बताया कि भारत पहुंचते ही अभिनंदन ने कहा, अपने देश आकर बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के घर लौटने पर संपूर्ण देश ने उनका हार्दिक स्वागत किया। पूरा देश उन्हें एक जांबाज सिपाही के रूप में देख रहा है, कोई उनकी तुलना हनुमान से कर रहे हैं और तो कोई उन्हें वायुवीर कहकर अलंकृत कर रहा है। उनके सकुशल घर लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, उनके नेताओं ने भी प्रसन्नता जताई। मेजर जनरल डॉक्टर गगनदीप बख्शी सेवानिवृत्त ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की घर वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की और साथ ही आतंकवाद के समाधान पर यह संदेश भी दिया, देश में एक वर्ग ऐसा है जो शांति में नोबेल पुरस्कार पाने की होड़ में लगा हुआ है, उसी वजह से वो आतंकियों के सफाया को भी मानव अधिकार हनन करार देता है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के संस्थापक बिट्टा ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जिंदा शहीद की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि अभिनंदन ने एक मिसाल कायम की और वे पूरे देश के लिए, विशेषता नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आइए हम चर्चा जारी रखे हुए हैं और अगले हिस्से में हम विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के बारे में और जानेंगे। सुनते हैं देश प्रेम के ये

आप सबका स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम सरफरोशी की तमन्ना। आज हम बात कर रहे हैं उन जवानों की, उन वीरों की, जिन्होंने देश की रक्षा की और जिन्होंने देश का सम्मान रखा, हमारे देश को गौरवान्वित किया। उन वीर जवानों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान और प्राण निछावर कर दिया। हम उन सब वीर जवानों को नमन करते हैं जो इस दुनिया से चले गए, और उन जवानों को सल्यूट करते हैं जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए, अपनी जान देने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की। वो अब स्वदेश वापस लौट आए हैं। हम उनको प्रेरणा स्रोत देखते हैं और खास करके युवा पीढ़ी उनसे बहुत खुश है। जैसे शौर्य उन्होंने दुश्मन के पास दिखाया, वो इस समय हमारे देश की जरूरत भी है। आइए एक छोटी सी कविता सुनाती हूं जो देश के प्रेम के प्रति, जो देश का प्रेम दिखाती है। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे बुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी आहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया अब है क्या कमी, पर दूर तू है अपने घर से, आ लौट चल तू अब दीवाने, जहां कोई तो तुझे अपना माने, आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये पल है वही जिसमें है छुपी कोई एक सदी सारी जिंदगी। तू न पूछ रास्ते में काहे आए हैं इस तरह दो राहें, तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए, चाहे तो किस दिशा में जाए। यही जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकार, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। इसी देश प्रेम के साथ मैं इस प्रोग्राम का कर रहा हूं समापन, और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि देश प्रेम अपने दिल में जगाइए। इस समय हमारे देश की ये बहुत ज्यादा जरूरत है, हम सबको संगठित करने के लिए। हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए, हमें अपने तिरंगे पर गर्व होना चाहिए, और हम उस तिरंगे को सल्यूट करते हैं। आप सबका समय अच्छा हो, और आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आप हमारे स्टूडियो के नंबर्स पे बता सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पर बता सकते हैं जो रेडियो वितस्ता का है। आप सबका समय शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: थे दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: बालाकैंड का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे अशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

फिल्म गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजुमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफन।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद मैं अपनी बात कह पाता।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star, हम सफर जिंदगी का।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साई 7 बजे।
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साई 8 बजे।
2: गणपति बप्पा मोरिया।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे।
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे।
2: गणपति बप्पा मोरिया।

0: भरत सोपोरी और आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। दोस्तों, आजकल हम सब अमीर बनने के सपने देखते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन क्या हो जब आपके इसी सपने का फायदा उठाकर कोई आपके खून पसीने की कमाई एक झटके में उड़ा ले जाए। आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक नया खेल चल रहा है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का। आपको घर बैठे पैसे डबल करने का लालच दिया जाता है और आज हम इसी जाल को बेनकाब करेंगे। धोखाधड़ी का तरीका, द ट्रैप। आखिर ये ठग हमें फंसाते कैसे हैं? इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है, घर बैठे पार्ट टाइम काम करें, बस वीडियो लाइक करें और पैसे कमाएं। शुरुआत में ये आपकी 200 से 500 रुपए तक सच में भी देते हैं ताकि आपका भरोसा जीत सके। फिर शुरू होता है असली खेल। आपको एक VIP ग्रुप में डाला जाता है जहां लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि उन्होंने 10,000 लगाए और 50,000 कमाए। दोस्तों याद रखिए, वे स्क्रीनशॉट नकली होते हैं और वे लोग भी ठगों के साथी होते हैं। जब आप बड़ी रकम निवेश करते हैं तो आपकी ऐप में पैसा तो बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन जब आप उससे निकालने यानी विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वे कहते हैं कि टैक्स भरिए या अकाउंट फ्रीज हो गया है और पैसे डालिए। अंत में वे गायब हो जाते हैं।
1: कैसे पहचाने और क्या है बचाव? अब आप सोच रहे होंगे कि असली और नकली स्कीम में फर्क कैसे करें। रेडियो वितस्ता पर नोट कीजिए ये सुरक्षा मंत्र। लालच से बचे। अगर कोई कह रहा है कि पैसा 10 दिन में डबल हो जाएगा तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। शेयर बाजार या कोई भी निवेश इतना रिटर्न नहीं देता। अनजान लिंक्स, किसी भी अनजान ऐप या टेलीग्राम लिंक पर भरोसा ना करें। निवेश के लिए हमेशा सेबी द्वारा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें।
0: टॉस्क फ्रॉड, यूट्यूब

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 5, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 5, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, SAPSRC।

0: दादू जल्दी आओ, हर काम में देरी करते हो। कार्यक्रम का समय हो चुका है, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं।
1: बस आ गया लक्ष्मी बेटा, तेरे में तो उमंग है, उत्साह है, इसलिए जल्दी स्टूडियो पहुंच गई। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे तो टाइम लगेगा ही।
0: क्या दादाजी, ऐसा क्या बोलते हो आप? आप तो हमारी शान हो, आप है तो हम है।
1: हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, मगर अब वक्त बदल रहा है। हम बुड्ढू की शायद अब किसी को जरूरत ही नहीं है।
0: ऐसा कुछ नहीं है दादू, सब आपको मानते हैं, तभी तो देखो मैं हर बार आपके साथ आ जाती हूँ अपने रेडियो के स्टूडियो 90.0 FM पर।
1: हाँ हाँ वो तो ठीक है, मगर अब आज का कार्यक्रम भी शुरू करेगी या नहीं?
0: दादू आपका हुक्म सर आंखों पर।
2: हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य

0: जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। मैं आपका भारत दादाजी
2: और मैं भारत दादू की पोती लक्ष्मी।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां देते हैं।
2: और हमारा ये खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सहयोग से हम आपके लिए लेकर आते हैं।
1: सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है, जिसके तहत सामाजिक कल्याण, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाता है, ताकि उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।
2: जैसा कि हम जानते हैं, बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर है, उनका अनुभव और ज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई बार उन्हें स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ये तब होता है जब परिवार जन उनका साथ छोड़ देते हैं और हमारे वृद्ध जन अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं। उनके पास वृद्ध आश्रम का सहारा होता है या कई बार दर दर की ठोकरें उन्हें खानी पड़ती है।
1: इसी के मद्देनजर सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कई योजनाएं चला रही है, और इन्हीं में से एक है अटल वयो अभ्युदय योजना। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ये पहल बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है, जो ये सुनिश्चित करती है कि उन्हें भोजन, आवास और समुदाय की भावना मिले।
2: बिल्कुल ठीक कहा दादू आपने। अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, जिनमें विकलांग लोग भी शामिल है, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करके उनकी सहायता करना है। इसके अलावा बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना, कौशल विकास और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना शामिल है।
1: अटल वयो अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से रह सके। ये योजना एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देती है, जहां बुजुर्ग नागरिक फल फूल सकते हैं।
2: सरकार का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से देश के करोड़ों वृद्धजनों को लाभ पहुंचाना है, विशेष रूप से विकलांग बुजुर्गों के लिए घर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना द्वारा समर्थित वृद्ध आश्रमों में लाखों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। इन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार देश भर में बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार करोड़ों रुपए का अनुदान आवंटित करती रहती है।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आए हैं अंबाला सिटी के मथुरा नगरी में, जो वृद्ध आश्रम है, जिसको जीवन धारा के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं श्रीमती पुष्पा रानी जी से, और सुनते हैं अब वो यहाँ पर कब से हैं और वो क्या कहना चाहते हैं।
3: थैंक यू, आपके आने का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी सबके आने का रीजन एक नहीं होता, तो मैं घर से किसी ऐसे कारण नहीं आई जो के बच्चों ने तंग किया हो या वैसे। सबके अपने अपनी प्रॉब्लम है, तो मेरी प्रॉब्लम और थी, वो तो लंबी कहानी है कि मेरा यहाँ से इलाज चलता था, काला मोतिया था, मुझे हर महीने आना पड़ता था, तो इसलिए मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारी किस्मत अच्छी समझो कि घर से आने के बाद हमें ये ऐसी जगह मिली है कि जिसने महसूस ही नहीं होने दिया कि हमें घर के अलावा यहाँ आकर कोई दिक्कत हो। इतने अच्छे पोर्शन

0: बने हुए हैं, उसमें हमें बच्चे मिलने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेसी है, अंदर अटैच है बाथरूम, किचन पूरा सेट है, जो जिसकी हमें बहुत सुविधा है। बच्चे आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन रहने की भी सुविधा है। तो बाकी जो ये यहाँ का स्टाफ है, ये इतनी देर मुझे रहते हुए हो गई है, मैं 7वें आई थी 1907, तो बच्चे हमें मिलने आते हैं, तो ये जो स्टाफ है ऐसे लगता है कि यही हमारे बच्चे हैं, इनके साथ इतनी देर से रह रहे हैं। मनोज जी है, ये मैडम जी है, ये ऐसे लगते हैं ये हमारा बेटा ये बेटी है। और कुक भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो हमें ये भी सुविधा है कि नहीं खाना बनता तो वहाँ ही खाओ, अगर कोई चीज़ बनानी हो तो हमारे अंदर सब कुछ बना हुआ है, किचन में रखा हुआ सारा सामान कुछ बना कर खा सकते हैं। तो वैसे भी इतनी सुविधा के मतलब हम एज हैं सब, तो सब रलकर बाहर धूप में बैठते हैं, तो चाय में बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कभी मन उदास नहीं हुआ। कभी घर की याद आ जाए तो बच्चे फट मिलने आ जाते हैं, उन्होंने कहा हुआ अभी कब, जब भी याद करोगे तो हम उसी वक्त आएंगे। ये मैडम जी को पता ही, अब आते हैं, अब भी आना उन्होंने 2-3 दिन बाद, वो आएंगे रहते हैं देखते, वो भी बहुत खुश होते हैं, बल्कि वो मेरी बहू तो ये कहेगी कि मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है। तो यहाँ मतलब दिक्कत कोई नहीं है, ना रहने की, ना खाने की, ना स्टाफ की तरफ से, बिल्कुल मतलब घर की तरह ही लगता है। घर में कोई दिक्कत हो सकती, जहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को आपको इस समय सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जब हम वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं तो खाने से ज्यादा हमें खुशी चाहिए, हमें चाहिए कि बच्चे हमारे साथ समय गुजारें। तो ये भी आपका एक घर है, इस घर में आप जब आपस में बात करते हैं, खुशियां आप आपस में बांटते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी सुनने वालों को?
0: देखो, यहाँ आकर भी जैसी जिस पोजीशन में भी यहाँ आते हैं लोग, तो उनको फिर बच्चों की याद तो आती है, तो ऐसे होना चाहिए कि घर से जब वो आते हैं इस पोजीशन से आए कि बच्चे भी उनसे मिलते रहें, वो भी घर जाते रहें, ताकि उनको महसूस ना हो कि हम घर से दूर बैठे हैं, हमारा कोई नहीं है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उनको मिलने का मतलब आते जाने रहने का दिल चाहे तो बच्चों के पास, तभी आएंगे ना, हम बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बच्चे भी आते रहेंगे। तो घर से आने से पहले ऐसी आदत ना बना कर आओ कि हमें कोई मिलने ही ना आए। तो वैसे अभी बच्चों ने भी अपने माँ बाप जहाँ भी हो, चाहे कोई जिस पोजिशन में भी आया, उनको मिलने आना चाहिए, तभी खुशी मिलती है। यहाँ रहने से कितनी सुविधाएं यहाँ हो, फिर भी कोई इंसान ऐसा नहीं जो बच्चों को मिलना ना चाहे, तो इसलिए बच्चों को जरूर मिलना आना चाहिए।
1: बच्चे इस समय अपने माँ बाप के साथ है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अपने माँ बाप की कितना ध्यान रखना चाहिए और अपने साथ रखना चाहिए जब उनको बच्चों की जरूरत
0: समझेंगे? जो माँ बाप घर रहते हैं तो बच्चों को भी उनके लिए कुछ ना कुछ टाइम उनके पास निकालना चाहिए। माँ बाप को ऐसा महसूस ना हो कि हमारे से कोई बात नहीं करता, हमसे कोई बोलता नहीं है, आप इतना सारा दिन अपने काम में बिजी रहते हो कि ऐसा ना हो कि माँ बाप को के लिए आपके पास कोई टाइम ना हो। कितना भी काम हो फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर माँ बाप के पास पूछो, उनकी सेहत का ध्यान रखो, उनके दवाई दवाई देते रहोगे तो उसे भी होगा कि बच्चे हमारी बात पूछते हैं। बाकी जो पोते पोतियाँ होते हैं, आपको पता है उनसे बुजुर्गों को ज़्यादा लगाव होता है, तो उनको भी मैं तो ये कहती हूँ कि स्कूल कॉलेज जाने से पहले दादी दादा को मिलकर जाना चाहिए, स्कूल जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए, ताकि वो भी सोचें कि हमारी घर में कोई कदर है, हमें भी कोई पूछता है। ऐसा ना हो बच्चे जाएं वो भी ना बुला कर जाए, अपने जो पोता पोती है वो भी ना, फिर बुजुर्गों का दिल हो जाता है। इसलिए मैं तो ये चाहती हूँ जो घर रहते हैं उनको भी मिलकर रहना चाहिए, ताकि बुजुर्गों को यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो
1: आप जब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो आप कुछ जब बातचीत करते हैं आपस में कुछ गाते भी हैं, कुछ भजन गाते हैं, कुछ कुछ ऐसा आप कैसे करते हैं?
0: हाँ, वो ये मैं महसूस करती हूँ कि जहाँ आकर जो मैंने सुख मिला हमें वो दिल से निकला, तो उसके बारे में दो चार शब्द गाने के रूप में कहना चाहती हूँ। रेड

0: ये आप सुन रहे थे पुष्पा रानी जी को, और बहुत ही भावुक पल मेरे लिए भी है, और मैं सभी श्रोताओं को ये जरूर कहना चाहूंगा, माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। तो जैसे हम हमेशा यही कहते हैं कि एक समय होता है जब हम माँ बाप की गोदी में होते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब माँ बाप हमारी गोदी में होते हैं, तो हम सब अपना दायित्व अपने समय पर निभाएं और अपने बुजुर्गों को खुश रखें और खुशहाल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, शुक्रिया। हम आपके अच्छे दिनों की कामना करते हैं।
1: धन्यवाद। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के हित में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY, स्टेजन अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एंगेजमेंट SCOPE, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE, इंटेग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स IPSRC, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स SAP SRC इत्यादि।
3: स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स SAP SRC, ये क्या है दादू?
2: राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ये योजना हमारे समाज के सबसे अनमोल सदस्यों यानी बुजुर्गों की भलाई के लिए है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2021 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 138 मिलियन यानी 13.8 करोड़ लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। ये संख्या समय के साथ बढ़ रही है। 2031 तक ये 300 मिलियन के करीब पहुंचने की संभावना है।
3: और हम ये भी जानते हैं कि इस आयु वर्ग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक अकेलेपन, मानव अधिकार सुरक्षा आदि।
2: राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कदम है। इसका उद्देश्य है बुजुर्गों की आवश्यकताओं को पहचानना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय लागू करना।
4: जीने की ख्वाहिश को ये झुलाए।
0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आज हम आए हैं सीनियर सिटीजन होम वृद्ध आश्रम मथुरा नगरी अंबाला सिटी, और आज हम बात करेंगे यहाँ पर श्री मनोज कुमार सैनी जी के साथ, जो प्रोग्राम ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी अंबाला के, और साथ में इंचार्ज है इस वृद्ध आश्रम के भी। उनसे हम बात करेंगे और क्या सुविधाएं हमारे वृद्ध जनों के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और उसके बारे में वो हमें जानकारी देंगे।
5: मैं मनोज कुमार सैनी, मुझे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से उपायुक्त एवं प्रधान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अंबाला श्री पार्थ गुप्ता के निर्देशन में यह है हमारा सीनियर सिटीजन होम जीवन धारा मथुरा नगरी में चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 30 कमरे हैं, और बुजुर्गों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अलग अलग तरह के वृद्धाश्रम चला रही है, जिनमें से एक ये मथुरा नगरी में है। जो लोग सक्षम हैं उनके लिए ये मथुरा नगरी में वृद्धाश्रम है, और जो लोग पे नहीं कर सकते या बिल्कुल जिनका परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है, जिनकी देखरेख के लिए कोई भी नहीं है, उनके लिए अम्बाला छावनी में हमारा अपना घर, जिनका कोई घर नहीं उसके लिए रेडक्रॉस का अपना घर है, जिसमें हमारे पास लगभग 20 से 22 लोग हमेशा रहते हैं और उनके खाने पीने का, रहने का, मेडिसन, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके घूमने की सारी व्यवस्था जिला रेडक्रॉस सोसाइटी अम्बाला द्वारा की जाती है। इवन उनके परिवार, जब रिश्तेदारों को उनका मिलाने का प्रयास भी हमारे द्वारा किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रिश्तेदार उनको रखना भी चाहे तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उनके साथ काउंसलिंग करके उनको उनके परिवार में सेटल करें। और बुजुर्गों के लिए भारत सरकार ने रेडक्रॉस सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर, जैसे सभी बुजुर्ग अपनी हम उम्र लोगों के साथ बैठकर अगर वो दिन के समय अपना समय व्यतीत करना चाहें तो रोटरी हॉस्पिटल के साथ हमारा रेडक्रॉस सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर है, जिसमें भजन संध्या, गोष्ठी, शेर व शायरी, अखबार की सुविधा है, मैगजीन की सुविधा है और कभी कभी हम समय समय पर सिविल हॉस्पिटल के साथ मिलके या अन्य किसी डॉक्टर के साथ मिलके हम लोग मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाते हैं। और अपना घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी सारा खर्च जिला रेडक्रॉस सोसाइटी और समाज की अच्छी अच्छी संस्थाओं के साथ मिलकर किया जाता है। जो हमारा मथुरा नगरी में वृद्धाश्रम है, इसमें जो लोग सक्षम हैं वो पे करके इंडिविजुअल रूम उनको मिल दिया जाता है, जिसमें बेड की सुविधा, पंखे की, हर तरह की सुविधा एक जो हम एक बुजुर्ग को चाहिए होती है इस उम्र में, वो सभी फैसिलिटी है। खाने के लिए कुक है, सफाई के लिए सफाई कर्मचारी है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ समय समय पर इनके साथ बातचीत करने के लिए आते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बुजुर्गों को खाने के अलावा साथ की जरूरत होती है, इनके साथ बातचीत करने वाला इनको व्यक्ति चाहिए होता है। ये समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जिला रेडक्रॉस सोसाइटी इनके लिए अरेंज करता है और बुजुर्ग भी इसका पूरा आनंद उठाते हैं।
6: मनोज जी, आपने विस्तार में बता दिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो हम सामुदायिक रेडियो है उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि जो भारत सरकार की योजनाएं वृद्धजनों के लिए है वो हम आम जन तक पहुंचाएं। जैसे आपने कहा कि अपना घर अम्बाला कैंट में है और ये वृद्ध आश्रम अम्बाला सिटी में है, तो जो ये दोनों घर है इन दोनों घर को रेडक्रॉस सोसाइटी चलाती है, और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो सुविधा है जो अफोर्ड कर सकते हैं और उनके लिए ये सुविधा भी है कि वो अपने जरूरत के अनुसार भी यहाँ पर रह सकते हैं, यानी कि उनको कुछ पे करना पड़ता है।
5: हाँ, उसको इंडिविजुअल रूम यहाँ दिया जाता है और जो जो दूसरा हमारा अम्बाला कैंट में उसमें हॉल है, एक एक कमरे में हमारे चार चार लोग रहते हैं ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो, इस तरह की व्यवस्था अम्बाला कैंट में है। अगर कोई अकेला यहाँ इंडिविजुअल रूम लेके रहना चाहता है तो वो अम्बाला सिटी में हमारा मथुरा नगरी में है। इसके लिए हम पूरा प्रॉपर चैनल से दो लोगों की सिक्योरिटी भी लेते हैं ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो हम किससे संपर्क करें, यदि बुजुर्ग चाहे तो हम उनके परिवार वालों से भी बात कर लेते हैं, और यही प्रयास रहता है कि बुजुर्ग वापस अपने घर तक चला जाए। कुछ लोग जाते भी हैं, जो नहीं जा सकते उनका स्वागत है।
6: मेरा मानना यह है कि उनको सिर्फ खुशी चाहिए अपने घर परिवार से। जब वो लोग आपके इस वृद्ध आश्रम में आते हैं तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है उनको उस तरीके से खुश रखना, उनका इलाज के लिए कोई अचानक कोई बीमार हो जाए तो इस तरीके की क्या सुविधाएं आप उनको देते हैं?
5: सर, जिला प्रशासन अम्बाला की तरफ से यहाँ हमारा वीकली सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर यहाँ चेक करने के लिए आते हैं, जो छोटा मोटा खांसी, जुकाम, बुखार, उसकी मेडिसिन हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध है। भगवान ना करे अगर इमरजेंसी आ जाती है तो हम सीधा सिविल हॉस्पिटल एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, विद इन 7-8 मिनट में बिल्कुल नज़दीक हॉस्पिटल आ जाता है और हम लोग इनके परिवार वालों को भी सूचित कर देते हैं कि ज़्यादा तबीयत खराब है और हम लोग इसको तुरंत सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। अगर वो प्राइवेट में जाना चाहें वो उनकी अपनी मर्जी होती है, इस तरह की फैसिलिटी है। और रही बात इनको यहाँ मन लगने की, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, वो अपने आप को धीरे धीरे, समय तो लगता है आपस में एडजस्ट होने का, लेकिन यहाँ बच्चों, जो स्कूल के बच्चे आते हैं उनसे इनकी इंट्रैक्शन होती है तो इनको भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने पहले बताया कि खाना इनकी रिक्वायरमेंट अब सेकेंडरी है, अब इनकी ज़रूरत है कोई इनसे बातचीत करे, इनके साथ मिले, इनके अनुभव को समझे, सीखे, और ये सब चाहिए। एक मैसेज मैं और समाज के सभी जन को देना चाहता हूँ कि अपने बुजुर्गों को आप अपने साथ रखें उनकी इच्छाओं के अनुसार, क्योंकि उन्होंने आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया। और लेकिन आज की डेट में इतना भागदौड़ हो गई है कि सभी लोग जॉब में हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो बच्चों की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो अपने दादा दादी को समय दें। जो माता पिता समय नहीं दे पा रहे, तो बच्चों की ड्यूटी बनती है कि वो अपने दादा दादी के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। प्रयास रहे, शत प्रतिशत प्रयास रहे कि बुजुर्ग अपने घर में ही रहे।
6: हम कोशिश करेंगे, आपके कुछ यहाँ पर जो वृद्ध जन है उनसे भी हम बात करेंगे। हम चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से उनकी आवाज भी और लोगों तक पहुंचे, और लोग ये जरूर समझें कि इनका खाना जो है अब वो इतना जरूरी नहीं है, बल्कि इनके लिए जरूरी है कि इनको किस तरीके से खुशी मिले, कौन व्यक्ति इनके साथ समय बिताए ताकि उनका जो दिन है वो अच्छे से गुजरे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
7: बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने समय दिया हमें, और हम आपकी इस बात को अंबाला की सभी वासियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 5 के जरिए हम लोगों तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
3: विशेषज्ञ से बातचीत करके बात तो समझ में आई दादू। अब मैं आपको और श्रोताओं को एक रेडियो नाटक सुनवाती हूँ, जिसका नाम है हमारा अधिकार हमारी पहचान। इसको सुनकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्यकारी योजना के संदर्भ में जानकारी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।

0: क्या दिन आ गए हैं बेटा। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आजकल बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं।
1: शर्मा जी, चिंता मत करो, सरकार ने राज्यकारी योजना बनाई है, इससे हमें मदद मिलेगी।
0: राज्यकारी योजना, ये क्या है?
1: इस योजना का उद्देश्य हमें स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन प्रदान करना है।
0: अच्छा, कैसे भला?
1: देखो, इस योजना के तहत नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेंशन और अन्य आर्थिक सहायता भी मिलती है।
2: पापा, आप ठीक हैं ना?
0: हाँ बेटा, अब मुझे स्वास्थ्य सेवाओं का भी ध्यान रखने की चिंता नहीं है।
2: क्या आप भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्यकारी योजना के बारे में जानते हैं?
0: मैं रमेश से सुन रहा था, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है।
1: वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्यकारी योजना में हमें कौशल विकास के अवसर भी मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियाँ।
0: वाह, ये तो बहुत अच्छा है।
1: हमें इस योजना का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए।
0: तो दोस्तों, इस नाटक से हमें ये सीख मिलती है कि सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए और हमारे लिए कई योजनाएं बनाई है, हमें मिलकर इनका लाभ उठाना चाहिए।
2: आप सभी से निवेदन है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और इस योजना यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्यकारी योजना स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजंस के बारे में उन्हें बताइए।
0: राज्यकारी योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का उपयोग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। योजना से संबंधित अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। वे आपको योजना की विस्तृत जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया समझाएंगे।
2: इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। आप सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी और आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या फिर एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर जानकारी ली जा सकती है।
0: योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, आई प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार रखें। ये दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया में सहायक होंगे।
2: वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्यकारी योजना के अंतर्गत कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसमें भाग ले और अपने स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
0: कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन इसमें होता है, जो स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इससे आप नए कौशल सीख सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
2: हमारे बहुत से बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस योजना के द्वारा इन्हें बहुत सी जानकारियां पेंशन योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में भी दी जाती है और साथ ही विभिन्न एनजीओ और संगठनों द्वारा बुजुर्गों के लिए समर्थन समूह बनाए जाते हैं। इनमें शामिल होकर आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं।
3: कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं, उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। सीआरए द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो आपके लिए प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का हमारा मकसद इतना ही है कि हम अपने बुजुर्गों को वो मान भाव दें जिसके वो हकदार हैं।
2: ये योजना सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एक जिम्मेदारी है। बुजुर्गों का अनुभव और ज्ञान हमारे समाज की धरोहर है और हमें उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। वह परिवार के स्तंभ होते हैं और अक्सर बच्चों और नातियों की देखभाल करते हैं। समाज में भी उनका एक विशेष स्थान होता है। बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल करना हमारे समाज की जिम्मेदारी है और उनके अधिकारों और कल्याण का ध्यान रखना आवश्यक है। बुजुर्गों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 डायल करें।
0: अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। मुझे यानी भारत दद्दू को,
2: मुझे यानी लक्ष्मी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 5, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजंस, SAP SRC। इस एपिसोड में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी किरणी दास ने, दद्दू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने, नाटिका में आवाज दी भारत सोपोरी ने, रमेश के किरदार को, मीरा के किरदार को आवाज दी किरणी दास ने और रमेश के दोस्त के किरदार को आवाज दी राहुल अलियान ने। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी का। आज के इस कार्यक्रम में वॉइस वाइट्स थी श्रीमती पुष्पा रांझी की, जीवन धारा मथुरा नगरी अम्बाला सिटी, और मनोज कुमार सैनी जी की, जो प्रोग्राम ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी अम्बाला और इंचार्ज वृद्ध आश्रम मथुरा नगरी अम्बाला सिटी, उनका विशेष धन्यवाद। ये कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित था। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: भरत सोपोरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और जरूरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे।
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे समाज की सेहत से जुड़ा है। वो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026।
0: बिल्कुल अनु, यह इस साल का 9वां राष्ट्रीय पोषण माह है, और इस बार इसकी थीम रखी गई है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। ये अभियान 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है।
1: और श्रोताओं, इसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से किया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है।
2: सबसे बढ़कर नारा थाली में हो रंग अनेक भोजन।
0: अनु, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है, इस बार ये थीम ही क्यों चुनी गई है?
1: देखिए भारत जी, इसके पीछे एक बहुत साफ सोच है। पहले जब भी पोषण अभियान की बात होती थी तो लोग यही समझते थे कि यह सिर्फ सरकार का काम है। आंगनवाड़ी केंद्र चलाना, वहाँ खाना बंटवाना, यह सब सरकारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों का सुपोषण और सर्वांगीण विकास केवल सरकार का नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
0: यानी यह सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए थीम में हमारी शब्द जोड़ा गया, यह बताने के लिए कि आंगनवाड़ी केंद्र किसी दूर की सरकारी इमारत नहीं बल्कि हमारे अपने मोहल्ले, हमारे अपने गांव का हिस्सा है, और इसे बेहतर बनाना हम सबका काम है।
0: तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई आंगनवाड़ी केंद्र है तो उससे अपनाइए, वहां जाइए, वहां की जरूरतों को समझिए। यही इस थीम का असली

0: आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
1: इसका मतलब क्या है अनु, थोड़ा समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसका मतलब है बेहतर भवन, पीने के पानी की सुविधा, चालू हालत में शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बेहतर माहौल। सरकार ने तो आंगनवाड़ी भवन निर्माण की लागत भी बढ़ाई है। पहले जो राशि 12,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि केंद्र मजबूत और सुविधाजनक बन सके।
1: और गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं ना?
0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है, जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही, बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अनु, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले। और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं, बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं।
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं।
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हम सफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गांव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है, जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है, हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहां है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस हरफन मौला गायक भूपिंदर सिंह और मिताली जी के नाम। दर्द, जज्बात, मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है शामे गजल।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: चबाता है।
1: तो गजल पेश है,
0: दुनिया कहे बुरी है, दुनिया कहे बुरी है ये बोतल शराब की।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है एक रेडियो रिपोर्ट, विषय है पुस्तक विमोचन, डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा द्वारा। किंग फिशर अम्बाला कैंट में 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे से। जिन पुस्तकों का विमोचन हुआ वो है कवि हृदय और बहुवर्णी। ये दोनों काव्य संग्रह डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा द्वारा लिखे गए हैं। इस आयोजन में अम्बाला के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में थे खेड़ा दंपति श्री प्रदीप खेड़ा और श्रीमती नीता खेड़ा। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और समापन पर चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था। प्रस्तुत है विस्तृत रेडियो रिपोर्ट। मंच संचालन किया श्रीमती अंजलि सिफर ने, सहयोग किया डॉक्टर अनुपमा आर्या और डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने।
1: वाकई तो अनगिनत है मेरी जिंदगी के, सोच रहा हूँ किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। तो हम में से बहुत से लोग हिसाब लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किताब लिखते हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर विनय मल्होत्रा, राजनीतिक शास्त्र की ज्ञाता, कवि बल्कि आशु कवि कहें तो बेहतर होगा, लेखक और अम्बाला के जाने माने साहित्य एवं समाज सेवी द्वारा रचित पुस्तकें कवि हृदय एवं बहुवर्णी के विमोचन में मैं अंजलि सिफ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे आज के अतिथिगण सामने आए। असतो मां सदगम्या, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, मृत्योर मां अमृतम गम्या। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर। ऐसी ही कामना करते हुए हम दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं।

0: डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा आयोजन के बारे में बताते हुए।
1: काज विमोचन है उसकी बुक रिलीजिंग सेरेमनी है, पुस्तक विमोचन। ये पोइट्री के ऊपर है, मेरी कविताओं का संग्रह है और ये रिटायरमेंट के बाद मेरा छठा काव्य संग्रह है जो मैंने लिखा है। और इसमें कवि हृदय को डिफाइन किया है, कवि दृष्टि को डिफाइन किया है पोएटिक फॉर्म में। और इसमें कई प्रकार की कविताएं हैं, राजनीतिक नेताओं पर है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, गीत है उनके ऊपर, अम्बाले के कई व्यक्तियों के ऊपर कविताएं हैं, स्वर्गीय यशपाल दास जी के ऊपर कविता गीत है, प्रोफेसर इकबाल सिंह चौहान जी के ऊपर इसमें एक कविता है, और कई सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे रिलेटेड कई पोएम्स हैं।
2: मतलब कि आपने टोटली सारा ही निचोड़ जो है वो इस बुक में दे दिया। तो इसमें मल्होत्रा जी, प्रधानमंत्री जी के बारे में हमने जो कविता लिखी उसकी कुछ लाइनें बताएंगे।
1: बाहर मोदी के काम वार कुछ तारीफ करें कुछ सराहें, बाहर मोदी के काम वार।
2: और सर ऐसा है कि इतना व्यस्त होने के बावजूद आपको इतना टाइम मिल जाता है?
1: ये टाइम निकालने पे सब कुछ निकल जाता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद टाइम ही टाइम है।
2: जी।
1: इसलिए मेरे को टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सारा दिन जब तक कुछ ना रोज लिख ना लूं, चाहे अखबार के लिए कोई लेख लिखूं, कविता लिखूं, गीत लिखूं, या किसी पुस्तक के लिए अध्याय ना लिख लूं, मुझे चैन ही नहीं आता।
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर अनुपमा आर्या ने सभी आमंत्रित लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया।
3: तो मैं आगे डॉक्टर अनुपमा आर्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे बीच मौजूद अजीज मेहमानों का स्वागत करें।
4: नमस्कार। आज की शाम बहुत खास है और खास इसलिए है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे हर दिल अजीज डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, जिनकी साहित्यिक यात्रा के सुंदर पड़ाव के साक्षी बनने के लिए। ये मात्र उनकी 30वीं पुस्तक नहीं है कवि हृदय या बहुवर्णी, उसका लोकार्पण नहीं है, सिर्फ एक किताब का विमोचन भी नहीं है, बल्कि मैं अगर सच्चे दिल से कहूं तो ये उनके वर्षों की लंबी साधना, संवेदना और सृजन का उत्सव है। ये उत्सव है सोच का, शब्दों का, समाज के प्रति दायित्व का, उनकी साहित्य की खुशबू का। और हम सभी मानते हैं कि कुछ रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, उपस्थिति से पहचाने जाते हैं। और आज आप सब यहाँ उनके एक बुलावे पे उपस्थित हो और एक इस शाम को एक यादगार शाम बनाने के लिए आप सभी का इस आत्मीय अवसर पर पधारने से हमारी खुशी और सम्मान दोनों बड़े हैं। स्वागत के ये अल्फाज चाहे मेरे हैं, पर इसके पीछे भाव, इसके पीछे सोच, इसके पीछे जो वानगी है वो डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी और डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी की है। कुछ मुलाकातें, जैसे मैंने कहा, महज मुलाकातें नहीं होती, दिल में उतर जाती हैं और एक खूबसूरत ना भूलने वाली एक यादगार शाम बन जाती है। तो आज क्योंकि मुझे आदेश हुआ है सभी का, अपनों का स्वागत करने के लिए, आज के इस सुअवसर पर मुख्य अतिथि खेड़ा दंपति अपनी मुस्कान, अपनी सौम्य छवि, अपनी आत्मीयता से अपनी पहचान बनाते नीता खेड़ा जी, प्रदीप खेड़ा जी, न जाने कौन सी दौलत है इनके शब्दों में, बात करते हैं दिल ही खरीद लेते हैं। हरियाणा सरकार में बहुत से विभागों पर अपना लोहा मनवाती, बड़ी, मैंने जैसे कहा, बड़ी सौम्य छवि मिसेस अनीता खेड़ा जी। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी की तरफ से। मैं स्वागतार्थी हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन नरेश भारद्वाज जी का, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब। बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने बड़े भाई का स्वागत करती हूँ। और नरेश जी, जब फोन पे विनय जी ने मुझे बताया कि आपको पता है कि वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो इनका जो कहने का अंदाज था वो ऐसे था, बड़ा गर्व वाला था कि मेरा भाई तो बहुत अंबाला का हर व्यक्ति आपसे परिचित है और मैं सदियों से परिचित हूँ क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन, और आपका बहुत स्वागत दिल की गहराइयों से आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत, हमारा ये स्वागत अभिनंदन स्वीकारें। डॉक्टर विवेक मल्होत्रा जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ अंबाला, हमारे लिए बड़े गौरव और गर्व का विषय के विरसे में संस्कार और सादगी लिए डॉक्टर मल्होत्रा। मैं अक्सर इनको कहा करती हूँ, लगातार 3 पीढ़ियों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा बेटा जो है वो भी इसी लाइन में आ गया और 4थी पीढ़ी भी इस सेवा के लिए समर्पित होने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत है डॉक्टर आर.आर. सूरी, सचिव रोटरी क्लब ऑफ अंबाला। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं वरन डीएवी संस्थाओं में मनोर्भव की जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है डॉक्टर साहब, और आपका जो असाधारण व्यक्तित्व है आपका सादर अभिनंदन है, अभिवादन है। अभिवादन है सुभाष बंसल जी, रोटेरियन। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ, कई सितारों को मैं जानती हूँ बचपन से। डॉक्टर सुभाष जी रोटरी की पहचान है, दिल में स्नेह का स्पर्श लिए हैं, कलम और जंग अनेक अनकहे अफसाने इनकी जबां पर हैं। सुभाष जी बहुत स्वागत है, और ये स्वागत डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी चाहते थे कि एक एक का नाम लेकर स्वागत किया जाए, तो मैं उसी आदेश की पालना करते हुए बीच में अपनी बात इसलिए जोड़ रही हूँ कि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब लोग जो यहाँ आमंत्रित हैं। अजय गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है मल्होत्रा दंपति की ओर से। आप रोटरी का एक ऐसा चेहरा जो बड़ा सजग, बड़ा हसमुख, हर दिल अजीज हैं आप, और जब कहीं मैं देखूं किसी भी गैदरिंग में आपका परिचय किसी शब्दों का मोहताज नहीं है क्योंकि रोटरी की आपने लगातार बहुत सेवा की है, तो बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन। मिसेस मंजू दास जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है। एक ऐसी सौम्य छवि है, हमारे वेदों में कहा गया कि 2 हाथ से कमाओ और 100 हाथ से दान करो, और ऐसा दान जो किसी को पता भी ना लगे। तो आपका परिवार जो है एक ऐसा नामी परिवार है अंबाला का, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई कई परिवार ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, कई शख्सियत ऐसी होती है जिनके बारे में अल्फाज कम होते हैं। तो मंजू जी बहुत स्वागत, दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत है। डॉक्टर आई.एस. चौहान जी मुझे नजर आ रहे हैं मेरे, मैं डॉक्टर साहब अगर आप जानते हो आपके सब्जेक्ट की

0: आपके बिना वो अधूरा रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नेहा परवीन मुझे नजर आ रही है, समाज सेविका है, इंद्रेश ग्रुप से आप संबंध रखती हैं और बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं आपके ग्रुप में, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि अम्बाला में इतने छोटे बच्चे, ये जनरेशन जो है इस तरह की समाज सेवा की काम जो है वो करती है। भारत सपोरी जी, डायरेक्टर रेडियो विदस्ता 90.0 FM, और मैंने अभी इनको कहा कि बहुत अच्छा लगता है अम्बाला का इकलौता रेडियो स्टेशन जिसमें कि विनय मल्होत्रा जी बहुत बार गए, मैंने इनकी इंटरव्यूज भी सुनी। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। इसमें हरीश दत्ता जी भी है, राहुल डारूवरा जी भी है, रेखा गुप्ता जी भी आने वाली है, और जो नाम मैं नहीं ले पाई वो शायद मेरी कमी रह गई होगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे पूरी लिस्ट दी थी और बड़ा इंश्योर किया था कि ये नाम जरूर बोलने हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका जो भाव था वो सब तक पहुंच गया है। और अंजलि सिफर जो अभी मंच पर आएंगी, और अभी आई भी थी, और अक्सर मैं इनके बारे में कहती हूँ कारीगर हूँ, शब्दों की मिट्टी से महफिल सजाती हूँ, और सिफर हूँ, सिफर किसी के साथ बढ़ मिलके उसका भाव बढ़ा देती हूँ, सिफर सिफर हूँ। तो अंजलि जी, अभी हम आपको सुनेंगे और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आगे चलेगा। मैं बहुत स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ अभय कुमार अरोड़ा जी जो हमारे दामाद हैं, बेटी सोनाली मल्होत्रा वामिका, क्योंकि ये माहौल जो डॉक्टर साहब को मिला है ये आपकी वजह से मिला है। मैं अक्सर कहती हूँ जिंदगी के जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं उसमें अक्सर फिसलकर उम्र के फर्श पर उम्र ढल जाती है, कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है, कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है। बनमाली जी बहुत स्वागत है, मैं मेरी आंखें आपको ही देख रही थी, रचना बनमाली और ओम बनमाली जी बहुत स्वागत है मैडम आपका। बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं आप, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनरव्हील के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके स्कूल में होते हैं। आपका डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी की तरफ से बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। ओपी बनवाली जी की मैं बात कर रही थी, ओपी बनवाली जी जो आप मेरे लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं वही आदर और सम्मान के साथ आपको वापस लौटा रही हूँ, शब्दों के साधक हैं आप और अनेक पुस्तकों पर इनके हस्ताक्षर हैं। इनकी लेखनी केवल शब्दों को पिरोती नहीं है बल्कि संवेदना और चिंतन को एक साथ बुनती है, और आप साहित्यिक यात्रा में डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी का अभिनंदन स्वीकार करें क्योंकि आप उनके साहित्यिक यात्रा के बहुत लंबे साथी हैं। बहुत आपका साधुवाद यहाँ आने के लिए डॉक्टर साहब। मैं आपके लिए यही हमारी सबकी तरफ से एक दुआ करूंगी कि आपकी किताबों में जो अभी अंजलि जी पढ़ रही थी एक सोच की खुशबू है, जो आप किताबें, जो तीसवीं किताब मैंने अभी कहा कि लोकार्पण नहीं, ये तो एक उत्सव है, हर पन्ने पर जिंदगी के रंग हैं, शब्दों में बसती आपकी गहरी समझ है, मानो हर पंक्ति एक नया सबक दे रही है, क्योंकि वरना जिस उम्र के ढलान पर हम बैठे हैं ऐसे लगता है कई बार बिना जिंदगी जिए जिंदगी गुजर जाती है, पर आपके साथ रहकर जिंदगी का हर क्षण बहुत रंगीन हो जाता है। बहुत बहुत अभिनंदन सबका, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत शुक्रिया अनुपमा मैम।
2: श्री ओपी बनवाली जी ने पुस्तक कवि हृदय की समीक्षा की।
1: विनय सर की जो आज पहली पुस्तक कवि हृदय, उसकी समीक्षा हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ओम प्रकाश बनमाली जी को, जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके लफ्ज अपने आप कविता का रूप ले लेते हैं, कविता का पैकर ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत ओम प्रकाश बनमाली।
3: धन्यवाद। मंच में विराजमान आज के अतिथि खेड़ा युगल रोटेरियन भारद्वाज जी, प्रोफेसर वीर सेन विनय मल्होत्रा ट्रस्ट के प्रधान सर्वे सर्वा रोटेरियन डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, रोटेरियन नीना मल्होत्रा जी, मंच संचालिका अंजलि और मेरे समक्ष उपस्थित सभी कला प्रेमी सुधीजन, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।

0: पुस्तक और उसका रचनाकार मैं समझता हूं उसमें वो संबंध है जो मां और संतान में होता है। रचनाकार उस शाब्दिक भावनात्मक परस्व वेदना से गुजरता है जब वो रचना कर रहा होता है। विनय मल्होत्रा जी कि ये पुस्तक मुझे कहा गया कि मैं इसकी समीक्षा करूं, तो समीक्षा अपने आप में विशद विषय है, लेकिन इसके जो कुछ पक्ष मेरे सामने आए हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। कोई भी पुस्तक जब मंजरे आम होती है तो उसको कई कसौटियों पर कसा जाता है, लेकिन ये वो कवि है जो समाज में रहता है, जिसका दिल धड़कता है, और इस किताब के मुख पृष्ठ पर भी कवि के हृदय में दिल के धड़कन जो है वो स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है कि वो धड़क रही है या नहीं धड़क रही है। वो किताब के पन्ने पलटेंगे तो हर शब्द में वो धड़कन आपको सुनाई देगी। लोक हिताय इसलिए भी कि वो अलमारी में बंद नहीं रही, किसी किताब में बंद नहीं रही, किसी पन्नों में बंद नहीं रही, वो आपसे साझा की जाती रही, चाहे वो रोटरी का कोई मंच हो, चाहे रेडियो वितस्ता का उद्घाटन हो, या अपने मित्र के साथ। एक इसमें कविता है, तीन मित्रों के बारे में एक कविता है, बिल्कुल 5-7 पंक्तियां हैं, उसको मैं त्रिवेणी कहूंगा। तो लोक हिताय है, मंजरे आम है, लोकार्पण हो रहा है, क्यों जनता से जुड़े हैं, लोक मंगल की कामना की जा रही है, और लोक मंगल में निज हित तो है ही, आत्म आनंद तो है ही, उत्प्राप्ति हो ही रही है, लेकिन जन मानस में समाज में बेहतरी के लिए, लोक मंगल के लिए, सबके कल्याणार्थ जो रास्ता दिखाने का उद्देश्य है छप रही है, तो निश्चित रूप से समाज से जुड़ने के कारण ही छप रही है, पाठक के साथ जुड़ने के कारण ही छप रही है, तो लोक हित का जो कसौटी है उसपे खरी उतरती है। दूसरी बात, छप रही है तो किन लोगों के बारे में बात की जा रही है, पात्र कौन है इसके, क्या ये वर्तमान समाज का या अतीत के समाज का या आने वाले समाज का दर्पण है कि नहीं। समाज में जो कुछ घटित हो रहा है साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, इसके ऊपर वो खड़ी उतरती है कि नहीं। आप इसका कोई भी पन्ना पलटेंगे, कोई भी कविता देखेंगे, तो उसमें जो वर्णन मिलेगा, जो पात्र मिलेगा, वो आज के समाज की हकीकत है, यथार्थ है, वास्तविकता है। उसमें बहु रंग है, कड़वाहट भी है, मिठास भी है, प्रेम भी है, हमारी विषमताएं भी, हमारी कमजोरियां भी हैं, तो समाज का चित्रण करती साहित्य माध्यम है समाज का, वो दर्पण है। क्या उस दर्पण पर वो खरी उतरती है, क्या उन लोगों के बारे में बात है जो हमारे सामने ही नहीं है। तो इसमें एक कविता थीम पे है, कवि हृदय, तीन भाषाएं हैं, देवनागरी में पंजाबी भी है, पंजाबी में भी बहुत खूबसूरत इन्होंने कविताएं लिखी हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम हैं वहां हिंदी पंजाबी में विभाजन रेखा बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, कोई भी कुछ भी समझ लेता है, तो सहजता सरलता भी एक शर्त है जो इन्होंने खरी उतरी है। कहीं इन्होंने विकास की तारीफ भी की है, तो कहीं बाढ़ों के कारण शहर के सत्यानाश होने के लिए भी वो संकोच नहीं किए हैं, पक्षपाती नहीं है, आलोचना भी की है, स्वच्छ आलोचना की है, ताकि सरकार की आंख खुले। उसी सरकार को इन्होंने सत्कारा भी है, जम के सत्कारा है, तो दोनों स्थितियां हैं, क्योंकि एक पक्ष होता तो मुझे दिक्कत होती, लेकिन मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं कि जिन नेताओं का ये वंदन करते हैं उनकी आलोचना भी करने में संकोच नहीं करते हैं, इस बात के हम गवाह हैं, हमने देखा है। मेरी दृष्टि में उस हिसाब से किताब बहुत सफल है।
1: श्री सुभाष बंसल जी ने पुस्तक बहुवर्णी की समीक्षा की।
2: तो आज इनकी एक नहीं बल्कि दो पुस्तकों का विमोचन है, तो इनकी दूसरी पुस्तक का परिचय देने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगी सुभाष बंसल जी को, जो कि लेखकों और कवियों के अल्फाज को उनका घर देते हैं, अल्फाज का घर यानी पुस्तक। तो वे स्वयं लेखक हैं, संपादक हैं, प्रकाशक हैं, जो कि अल्फाज को घर देने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सुभाष बंसल सर।
3: लेखक, कवि, गायक, समाज सेवी, प्राचार्य,
0: एवं शिक्षाविद डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा पीएचडी एमए गोल्ड मेडलिस्ट का अध्यापन प्रेम जगविदित है। अनुशासन प्रिय, मिलनसार, कुशल वार्ताकार, उत्साही स्वभाव आदि गुण इनके ऐसा बनने में सहायक हुए हैं। हम भी चाहेंगे ये गुण हमने आए। पढ़ना लिखना और समाज सेवा इनके नित्य कर्म का महत्वपूर्ण अंग है। आज भी जारी है वो। अध्ययन, अध्यापन तथा शोध के सिलसिले में इन्होंने 12 यूरोपीय तथा उत्तरी अमेरिकी देशों का भ्रमण किया। ये अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मानद सदस्य हैं। रोटरी क्लब ऑफ अंबाला के पूर्व प्रधान तथा बीबीएम ट्रस्ट के प्रधान हैं। बहुवर्णी नाम की इस पुस्तक को साहित्य कलश पब्लिकेशन पटियाला ने अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया है। 100 पृष्ठों के काव्य संग्रह का मूल्य मात्र 250 रुपए रखा गया है। अनुक्रम प्रस्तावना के अतिरिक्त शेष पाठ्य सामग्री को 9 भागों में विभाजित किया गया है। 61 कविताएं हैं। ये गेय कविताएं सरल हिंदी व पंजाबी भाषा में लिखी गई है। इन कविताओं के विषय आम जीवन से लिए गए हैं। पहला भाग व्यक्तित्व नाम से है। इसमें समाज सेवी श्रीमती प्रोमिल चावला, राजनीतिज्ञ एवं मंत्री श्री अनिल विज, प्रोफेसर वी सेन, श्री वाई पी दास, श्री जसवीर जस्सी, श्री सुभाष बंसल, श्री उदय ठाकुर, सुश्री नेहा प्रवीण, माता श्रीमती स्वर्ण तथा दोहती कुमारी गुरमेयर तथा प्रोफेसर इकबाल सिंह चौहान शामिल हैं। इन सभी कविताओं में व्यक्ति विशेष के गुणों, उनकी चारित्रिक विशेषताओं, उनके दैनिक व्यवहार को उजागर करती भाव भंगिमाओं, उनके वैयक्तिक पारिवारिक व सामाजिक सरोकार आदि को इंगित करते संकेत अत्यंत कुशलता व करीने से पिरोए गए हैं। एक उदाहरण हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अनिल विज का देखिए। कोई भी विकास कार्य इसने ना छोड़ा, अपराधी माफिया ने हरियाणा छोड़ा। चौकीदार बन सदर बाजार में बैठता, आम लोगों के साथ चाय पीता, शनि दरबार में शिकायतें सुनता, तभी तो अनिल विज हर दिल में बसता। सबको पता है जो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया। विनय जी लेखक के साथ साथ संगीतकार और गायक भी है। ये तुकांत हर तुकांत हर प्रकार की लाइनों को खूबसूरती से लय में गा लेते हैं। यदि सांस लय हो तो मेज हथेली और उंगलियों से उसकी कमी पूरी कर लेते हैं, पर अपनी बात प्रभावी ढंग से कहे बगैर नहीं छोड़ते। पुस्तक का भाग 3 जो देश राजनीति पर है, उसमें एक ओजस्वी कविता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कार्यों और उपलब्धियों पर भी है। भाग 5 में रोटरी एवं रोटेरियंस के अंतर्गत रोटेरियन नरेश ढींगरा और रोटेरियन दिनेश सेठी पर भी अति सुंदर कविता है। इसी प्रकार अपने पिता स्वर्गीय प्रोफेसर वीर सेन जी को याद करते हुए कहते हैं, गाना आपको याद आ जाएगा, कभी हम आपसे पढ़ते थे एसडी कॉलेज की क्लासों में। याद आया गाना? कभी हम आपसे पढ़ते थे एसडी कॉलेज की क्लासों में, भरे होते थे हंसी मजाक आपके लेक्चरों में, पढ़ाते थे जो इकोनॉमिक्स वो छात्र याद करते। आ गया गाना याद बेदर्दी बालवा। इसी तरह एक कविता शिकंजवी और शराब में मुकाबले पर है। वो कविता तो बहुत आप लंबी है और पढ़कर के देखें, कहां तक गिनाऊं, एक से एक कविताएं हैं। एक शेर याद आ रहा है, खुश्क बातों में कहां है शेख कैफ़े जिंदगी, खुश्क बातों में कहां है शेख कैफ़े जिंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है। अगर किताब का वास्तव में आनंद लेना है तो किताब खरीद कर आराम से पढ़े।
1: डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा ने अपने अलग अंदाज और तरन्नुम में प्रस्तुत की कुछ कविताएं जो इन दोनों पुस्तकों में लिखी गई हैं। हम गौरवान्वित हैं कि रेडियो वितस्ता को भी जगह मिली पुस्तक कवि हृदय में। प्रस्तुत है आयोजन के कुछ लम्हे और श्रीमती नीता खेड़ा का संबोधन।
4: आज के मुख्य अतिथि मिसेस नीता खेड़ा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हरियाणा एंड मिस्टर प्रदीप खेड़ा, जिला संचालक आरएसएस और अंबाला के प्रतिष्ठित मेडिसिंस के व्यापारी। विशिष्ट अतिथि रोटेरियन नरेश भारद्वाज, अंजलि सिफर जी, मैडम नीना मल्होत्रा तथा सभी अतिथिगण। मैं ना तो कोई कवि हूं, ना मेरा कोई महान कवि बनने का इरादा है, और ना ही मैंने कभी कविता लिखने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं से ली है। जो मन में आया बस लिखता चला गया, और ये इस तरह ही लिखी चली, लिखते चले गए, गीत और कविताएं बनती चली गई और वो छपती चली गई। तो अधिकांश वही है जो यहाँ आज बैठे हुए हैं, तो उन पर जो है मैं आपको कुछ एक, सबसे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था 17 सितंबर को, और वो जन्मदिन अब हमने एक महीना मनाना है। किसके रूप में? एक संकल्प और सुशासन, सेवा संकल्प और सुशासन मास के रूप में हमने मनाना है। तो पहली कविता जो है मैं उन्हीं पर, आपको गीत है वो उन्हीं पर सुनाता हूं। वहर मोदी के काम वा, कुछ तारीफ करें कुछ सराहें, वाह।

सारी पोयम नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ एक स्टांजा ही। मेक इन इंडिया इन का नारा, आत्मनिर्भर भारत बना सारा। मेक इन इंडिया इनका नारा, आत्मनिर्भर भारत बना सारा। कुछ हम भी तो साथ दें, हम काम अपने करते जाएं। वाह रे मोदी के काम, वाह। कुछ तारीफ करें कुछ सराहें, वाह रे मोदी के काम, वाह। क्या मैंने पूरी गीत नहीं सुनाया, सिर्फ एक स्टांजा सुनाया। हमारे शहर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे रोटेरियन, वाईपी दास जी, यश दास जी, मेट्रो मोटर्स वाले। अभी सुभाष बंसल जी का जन्मदिन था, उस पर भी मैंने उनकी एक कविता सुनाई थी उनके जन्मदिन पर। तो ये भी एक कविता मैंने उनके ऊपर लिखी थी 2021 में, जब उनका उपन्यास का विमोचन हुआ था। उनके उपन्यास का नाम था जीना या मरना है, यही था ना टाइटल, उसी पे मैंने कविता लिखी। बड़ी शॉर्ट सी कविता, एक मिनट सुने। जीना यहां मरना यहां, सुख यहां दुख यहां, खुशी यहां गमी यहां, मौज यहां रोग यहां इलाज यहां। किताबें यहां, पढ़ना यहां, पढ़ना यहां, सीखना यहां, सीखना यहां, अनुभव यहां, मुस्कुराना यहां, आंसू यहां, हंसना यहां, रोना यहां। बहार यहां, कैंसर यहां, कैंसर यहां, तीमारदार यहां, कैंसर यहां, रोटरी अस्पताल यहां, और हमने जाना कहां, जीना यहां मरना यहां। एक कविता मैंने लिखी, मैं जैसे बता रहा था, हमारे प्रतिष्ठित नागरिक थे शहर के श्री यशपाल दास जी, मेट्रो मोटर जो रेलवे रोड पर है उनके स्वामी थे। ये कविता उन पर है इस पुस्तक में, बहुवर्णी गीत है ये, मैं उसका सिर्फ एक स्टांजा ही सुनाऊंगा। ये मैंने उनको ट्रिब्यूट दिया था जब उनकी डेथ के बाद, तब लिखी थी। नैनो से आंसू नहीं रुकते, हो गए सब हैरान, हो नैनो से आंसू नहीं रुकते, हो गए

0: पे आज हमारे में एक बैठी है नेहा परवीनी, छोटी सी लड़की, एक मिनट खड़े होंगे आप देखिए। लेकिन जो जो इसके काम बहुत बड़े हैं, बड़े सोशल सर्विस, रोटरी क्लब के काम एक तरफ, इस अकेली का काम एक तरफ, इतना इसने सोशल सर्विस की है। तो इस पर भी मैंने कविता लिखी है इस पुस्तक में, उसका भी एक स्टांजा ही सुनाऊंगा। इसके कद पे ना जाना, इसकी उम्र पे ना जाना, इसके धन पे ना जाना, इसकी सादगी पे ना जाना, जाना तो जाना इसके कौशल पर जाना, जाना तो जाना इसके कामों पर जाना, जाना तो जाना इसकी भावनाओं पर जाना, जाना तो जाना इसकी सेवाओं पर जाना। अब हमारे प्रोफेसर इकबाल सिंह चौहान बैठे हैं, इनके साथ अपने जीएमएन कॉलेज में 29 साल मैंने काम किया, इनकी गाइडेंस में, इनके इनकी इनकी ब्लेसिंग्स के साथ। और वीके पुरी जी होते थे हमारे कलीग, वो भी इनके बहुत मित्र थे। तो इनके ऊपर भी एक पूरी कविता है पूरे पेज की, मैं उसका सिर्फ दो स्टांजा सुनाऊंगा। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी है कितनी दूरियां, रहते हम पास पास है लेकिन मिलना बड़ी देर बाद होता है। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी है दूरियां, दूरियां नहीं मिटा पाई है यारियां, जहां चाह वहां राह ने खत्म कर दी खवारियां। बनारसी दास स्कूल अंबाला का सबसे पुराना स्कूल है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये हाई कोर्ट के जजेस, पुलिस के कमिश्नर, पुलिस के सॉरी सेनापति, वो सभी इसी स्कूल से निकले के गए हैं। तो इस स्कूल पर भी एक कविता मैंने लिखी थी, वो आप सुने। है ये अंबाले का सबसे पुराना और हेरिटेज स्कूल है। ना रहे वो राय बहादुर, ना रहे वो बनारसी दास, ना रही वो बातें, ना रहे वो हेडमास्टर। इनके कई हेडमास्टर बड़े पॉपुलर थे, अशवाजी आप उनका नाम लो एक दो दिन, हाँ सबसे ज्यादा तो वो उनका स्टूडेंट नाम लेते हैं। हाँ विशिष्ट जी भी थे, ठीक राइट, हुकमचंद जी का बड़ा नाम लोग स्टूडेंट लेते हैं। ना रहे वो राय बहादुर, ना रहे वो बनारसी दास, ना रही वो बातें, ना रहे वो हेडमास्टर, ना रहे वो मास्टर, ना रहे वो टीचर, बस रह गई है यादें, रह गई ये इमारत जो बन गई है मुसीबत। बस वाजपेयी जी के ऊपर और एक रेडियो वितस्ता पर है कविता, वो सुने, वो उसके डायरेक्टर बैठे हैं, उस पर मैंने दो तीन कविता लिखी है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, रेडियो वितस्ता पर, मैं उसका भी एक स्टांजा सुनाऊंगा। बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, रंग ये लाता, खुश ये करता, मनोरंजन करता, मैं सुनूं इसको रोज रोज रे, काहे तुम भी नहीं सुनते रोज रोज रे। बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, मुझे सुबह सुबह भजनों के संग जगाता, मुझे सुबह सुबह भजनों के संग जगाता, कोई भी इसका प्रोग्राम मैं नहीं छोड़ता, कानों में लगाकर माइक्रोफोन रखता, टीवी को बुला देता, मैं सुनूं इसको रोज रोज रे, काहे तुम भी नहीं सुनते रोज रोज रे। बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, तो ये रेडियो वितस्ता पर था।
1: स्वागत है उनका जो दिल के पास होते हैं। और नीता जी आइए और अपने कुछ शब्द हमारे आज के श्रोताओं के लिए कीजिए। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कहूं, आर्किटेक्ट कहूं, या इस कार्यक्रम की जो आज की भावना है, जो आज का ये आयोजन है, उसके मूल तत्व कहूं, आदरणीय विनय मल्होत्रा जी और उनके सब काम में उनकी सहयोगी, उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रदीप खेड़ा जी जिनकी अर्धांगिनी होने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है, नरेश भारद्वाज जी जो आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे, किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा, बहुत से सारे रोटेरियन भाई जो यहाँ उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत को सबसे पहले चार चांद लगाया अपने शब्दों से, मेरी वो सखी जब मैं कुछ नहीं थी, जब वो प्रधानाचार्य बनी, अध्यापिका थी, उसके बाद वो अब रिटायर्ड है, लेकिन हमारा वो सफर जब मैं एक बीजेपी के मेंबर के जैसे इस कॉलेज में जाती थी और आज तक, तब भी वो मेरी सखी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, ऐसी डॉक्टर अनुपमा आर्य जी। इस पुस्तक जो इन्होंने दो पुस्तकों का आज हम विमोचन कर रहे हैं उस पे विस्तार से चर्चा करते हुए आदरणीय बनमाली जी, जिनकी रचनाओं से हम कई बार हम रूबरू हुए विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में, सौभाग्य की बात है कि उनकी धर्म पत्नी का नाम भी रचना है। इनको बहुत बार आज इन्होंने बहुत विस्तार से पुस्तक के बारे में हम सबको बताया, बहुत अच्छी तरह से उसको वर्णित किया, दूसरी पुस्तक का जो समीक्षा की है वो सुभाष बंसल जी ने, वो भी उन्होंने बड़े विस्तार से बहुत अच्छे से की। मेरा इतना सा कहना, छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ आशीर्वाद वचन के लिए यहाँ बुलाया गया है, जो मुझे कहा गया था आज किसी भी पुस्तक को हम सिर्फ कागज के पन्ने ना समझे, किसी भी पुस्तक को एक साधारण से कागज के पन्ने ना समझे। विद्या विनय देती है, हमारे साहित्यकार भी आज विनय के नाम से सुशोभित हैं। विद्या हमें विनय देती है, विनय से पात्रता आती है। तो ये जो शब्दों का समूह ये लोग पिरो के पुस्तक के रूप में हमारे सामने रखते हैं समाज के लिए, वो एक सिर्फ पुस्तक नहीं, सिर्फ कागज का संग्रह नहीं, कुछ शब्दों का संग्रह नहीं, ये कवियों का या किसी भी जो साहित्यकार का, वो उनकी कल्पना, उनके ज्ञान, उनकी दूरदर्शिता, उनके अनुभव, उन सब का एक प्रयोग करके वो शब्दों में पिरो के हम सबके ज्ञान वर्धन के लिए समाज को देते हैं। साहित्य का दीप सदैव प्रज्वलित रहे, आपकी कृतियां ज्ञान प्रेरणा एवं संवेदना के माध्यम से आप हम सब के लिए नई नई पुस्तकें, नई नए अपने एक्सपीरियंस इस समाज को देते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी, इतने खूबसूरत शब्द आपने हमारे लिए बोले और इतनी सुंदर शुभकामनाएं आपने दी, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग ही तो है हमारे प्रोग्राम की शान। तो आप थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि कवियों के बीच में बैठ के मेरी भी भाषा जो है वो कवि की तरफ, कविता की तरफ जानी शुरू हो गई है।
3: अंत में मुख्य अतिथि श्री प्रदीप खेड़ा का संबोधन।
4: आज के इस पुस्तक विमोचन के शुभ अवसर पर मंचा सिंह जो आज के सूत्रधार भी हैं, डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, उनके साथ उनके जीवन में उनके दुख सुख के साथी डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी, हमारे जो आज के विशिष्ट अध्यक्ष रहे डॉक्टर नरेश भारद्वाज जी, और मेरे जीवन में मेरे दुख सुख के साथी श्रीमती नीता खेड़ा जी, और आज के इस सभागार में उपस्थित जो समाज का एक एलीट वर्ग है जो अपने आप में कई समूहों को रिप्रेजेंट करता है, दो तीन चार मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज का जो यह अवसर है केवल दो पुस्तकों के विमोचन का अवसर नहीं है, बल्कि शब्दों के उत्सव और भावनाओं के सम्मान का अवसर है। आज दो पुस्तकें, सुंदर कृतियां जो कि डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी ने हमारे बीच में रखी, बहुवर्णी एवं कवि हृदय। बहुवर्णी अपने नाम में ही अनेक रंगों को समेटे हुए है, जीवन भी तो बहुवर्णी है, कहीं सुख का उजाला है, कहीं संघर्ष की तपेश है, तो कहीं रिश्तों की मिठास भी है, तो कहीं अनुभवों की कसक भी है। साहित्य इन सभी रंगों को शब्द देता है। मुझे विश्वास है कि जो यह बहुवर्णी पुस्तक है पाठकों के जीवन को इन्हीं अनेक रंगों से परिचित भी कराएगी। दूसरी जो सुंदर कृति है वो कवि हृदय है। कवि हृदय होना अपने आप में एक विशेष संवेदना है। कवि वह नहीं जो केवल सुंदर शब्द दे, कवि वह है जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को महसूस करे और समाज के अनकहे शब्दों को वो शब्द दे सके। ये कहा भी गया है कि जब शब्द हृदय से निकलते हैं तो वो हृदय तक जाते हैं, ऐसा हमने महसूस भी किया है। और आज भी हमने हमारे से पहले, चाहे मन संचालिका हो, चाहे जिन्होंने परिचय दिया, डॉक्टर अनुपमा आर्या ने, डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने, सुभाष जी ने, सभी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो दिल को छू गए। लेकिन आज मैं एक बात, क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये कवि महान क्यों होते हैं। ये इसलिए कि जब लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत में आए तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट करने की योजना बनाई, उस संस्कृति को अगर बचाने का कोई काम किया तो आप जैसे जो साहित्यकार हैं जिन्होंने कि इसको जीवित रखा, ना केवल सजोकर रखा बल्कि उसको आज के इस युग में दोबारा से प्रचलित किया, ये मुझे लगता है कि हमारे लिए भी गर्व की बात है कि अंबाला में ऐसे ऐसे लोग उपस्थित हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना कामना करूंगा कि जो बहुवर्णी और विविध रंगों से पाठकों के जीवन को समृद्ध करे और कवि हृदय जो है वो अपने संवेदनशील मनुष्यता के भाव को और गहरा करे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जहां शब्दों में संवेदना होती है वहां साहित्य जन्म लेता है, और जहां साहित्य जीवित रहता है वहां समाज की आत्मा जीवित रहती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कामना करूंगा कि ये जो दोनों पुस्तकें हैं, जैसे इनकी पहले पुस्तकों ने समाज में अपना रंग जमाया, अपनी एक स्थान स्थापित किया, ये दोनों पुस्तकें भी ऐसे ही स्थापित करेंगी और आने वाले समय में 30 पुस्तकों के बाद भी ना जाने कितनी पुस्तकें हमने डॉक्टर साहब के जो है हाथों से जो लिखी हुई हैं, जो उन्होंने शब्दों को पिरोकर हमारे समक्ष रखा है, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक बार दोबारा से डॉक्टर विनय मल्होत्रा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: रेडियो वितस्ता के फाउंडर डायरेक्टर भारत सुपोरी ने भी वितस्ता का अर्थ बताया।
1: इससे पहले कि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़े, भारत सुपोरी जी से मैं विनती करती हूँ कि वो आकर दो शब्द कहें।
5: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मल्होत्रा जी और मेरे सभी दोस्त भी और मेरे जो बड़े हैं जिनसे मुझे आशीर्वाद हमेशा चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभारी हूं और डॉक्टर मल्होत्रा जी का कि वो रेडियो वितस्ता को कहीं ना कहीं अपने मन के साथ रखते हैं। मैंने कई बार देखा है कि घर में रेडियो उनका जो है ऑन होता है और हमें सजेशन भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, खास करके वह थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी जो थिएटर ग्रुप है अंबाला का, पिछले एक दशक से ज्यादा का वही संस्था रेडियो विदस्ता भी चलाती है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर हिंदी भाषा की बात हो रही है, मैं कश्मीर में जन्मा हूँ और उर्दू मैंने स्कूल में पढ़ी है, हिंदी मैंने घर में पढ़ी है, कई बार मेरा उच्चारण भी हिंदी में गलत होता है, बट आज भी हम 100% जो प्रसारण है वो हिंदी में करते हैं और हिंदी में ही बोलने की कोशिश करते हैं। और आप विश्वास करिए कि जो हिंदी पढ़े लिखे हैं, शायद कई बार मैं उनकी जो गलती है वो सुधारता हूं, और खास करके उर्दू मैंने पढ़ी है तो जो उच्चारण सही होना चाहिए, जैसे इजाजत होना चाहिए, तो मेरे थिएटर में, मेरे रेडियो पर कोशिश यही होती है। आप सभी का प्यार हमें चाहिए, जैसे डॉक्टर मल्होत्रा जी देते हैं, हमेशा सहयोग देते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर देखेंगे, थिएटर के लिए कोई ज्यादा सहयोग नहीं देते हैं, तो डॉक्टर मल्होत्रा जी हमें हमेशा आगे ले आते हैं। पिछले 36 वर्षों के विस्थापन में मैं यहाँ अंबाला में रह रहा हूँ। अंबाला मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि कश्मीर की है, दोनों जगह से जुड़ा हूँ। हमारे रेडियो का विदस्ता जो नाम है, बस वो बता दूंगा क्या है। कश्मीर में वेरी नाग एक जगह है जहां पर एक चश्मा है, बहुत बड़ा है, वो रिवर जहलिम का स्रोत है। उस स्रोत को हम कश्मीरी में व्यर्थ बोलते हैं, तो हमारा थिएटर ग्रुप व्यर्थ थिएटर एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला रजिस्टर्ड है और व्यर्थ को ही संस्कृत में वितस्ता बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रवाह वितस्ता का सदियों से रहा है वही प्रवाह हमें अंबाला के लोगों का, अंबाला के जीवन का, अंबाला को विश्व पटल पर रखने का जो वितस्ता ने प्रण लिया है उसको हम जारी रखेंगे। आप सभी का सहयोग चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो वितस्ता की ओर से आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही आप रेडियो वितस्ता पर भी जरूर लिखें और एक मेरा सुझाव भी है मैडम नीना जी के लिए भी, आप जरूर कविता लिखें, हमें भाव पता चलेंगे कि जिंदगी का जो सफर है वो कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
6: तो चलिए अब हम आप पहुंचे हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर। सफर खत्म हो जाता है मगर निशानियां बाकी रहती है, ये वो खामोश पन्ने हैं जिनमें सदियों की कहानियां बाकी रहती हैं।
3: ये था इस आयोजन पर एक रेडियो रिपोर्ट, रेडियो वितस्ता हमेशा आप सभी अंबाला वासियों को अवगत कराता रहेगा। दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधारे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: नमस्कार 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। आज आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूं, और आज के प्रोग्राम का शीर्षक है कसक एहसासों की। बहुत सी बातें जिंदगी के बीच में बीतती हैं, वक्त बीत जाता है, लेकिन वो चुभन, वो कसक, वो कभी खत्म नहीं होती। और आज आप सबकी उन्हीं कसकों को दोबारा से उभारने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है कसक एहसासों की। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन मैं स्वयं चाहता हूं कि गानों के साथ साथ में आप लोगों से बातचीत भी करता रहूं और अपने ख्यालात भी आपके साथ में बांटता रहूं, क्योंकि अश्क आंखों में उठाते हुए थक जाता हूं, बोझ पानी का उठाते हुए थक जाता हूं, पांव रखते हैं मेरे जज्बातों पे जो, वो क्या जाने मैं निशानात मिटाते हुए थक जाता हूं। भाई सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ और आनंद बख्शी का लिखा हुआ बॉबी फिल्म का

अब अक्षयों को पास में रहने दिया या नहीं रहने दिया, ये दोनों लव बर्ड्स ही जाने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप हमारे से रेडियो वितस्ता से प्यार करेंगे ना, तो हम जिंदगी भर निभाने का वादा करते हैं आपसे, क्योंकि नाम की दोस्ती, काम की यारी दूसरों की तरह, ये आदत नहीं हमारी। अगर आप भरोसा करेंगे तो हम भी आप ही के सहारे का भरोसा करेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लता मंगेशकर जी ने सफर फिल्म के बीच में और कल्याण जी हंस जी के संगीत में

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। आपके दिल के जज्बातों को पेश कर रहा हूं आप ही के कार्यक्रम कसक एहसासों की गिल। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। बाहर सावन बरसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बदरा नैनों में छाता है ना तो दिल पर भी फर्क पड़ता है और जहन पर भी फर्क पड़ता है। फिल्म मेरा साया में लता मंगेशकर को सुनिए, मदन मोहन के संगीत में जिसके बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने।

हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्यों तलाश रही हैं तेरी बेताब निगाहें हमको, क्यों तलाश रही हैं तेरी बेताब निगाहें हमको, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे। और महबूब जब आसपास कुछ वक्त तक नहीं दिखाई देता ना, तो फिर दिल ही कहता है, दिल जो इज्जत फिल्म के बीच में लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में साहिर लुधियानवी की कलम से कहा था, आइए हम सब भी सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं। कुछ लोग दिल की बात आंखों से ही बोल देते हैं। भरोसा फिल्म में लता मंगेशकर को सुनिए, संगीतकार हैं रवि और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

0: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: बहुत से कस्में वादे होते हैं मोहब्बत के बीच में, लेकिन बहुत कम वायदे हैं जो पूरे हो पाते हैं। हालांकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। चलिए छोड़िए उनको, बात वो सुनिए जो मैं कहता हूं आपको, कि दिल में मतलब और जुबान से प्यार न कर, दिल में मतलब और जुबान से प्यार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर। नौजवानों को हम भूल नहीं सकते, आज इनके लिए भी पेश है ये आजकल का गीत, जिसको सचिन जिगर और साथियों ने गाया है, और सचिन जिगर ने ही इसमें अपना संगीत दिया है। आइए इस गीत के साथ भी हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं और फिर गीतों के नगमों के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे।

सब एहसासों की के इस प्रोग्राम में अब हम वक्त के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां हमारा और आपका फिलहाल बिछड़ना आता है। क्यों? क्योंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपको और ज्यादा इन एहसासों की कसक महसूस करा पाए। इसलिए अब पेशे खिदमत है हमारा ये आखिरी गीत, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर कहेंगे कि अपनी परछाई में जुल्फे न सवारा कीजिए, अपनी परछाई में जुल्फे न सवारा कीजिए, मैं बन जाऊं आईना बस एक इशारा कीजिए, मैं बन जाऊं आईना बस एक इशारा कीजिए। रेशमा को सुनिए फिल्म हीरो में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इस खूबसूरत गीत के साथ में हम आपसे चाहेंगे इजाजत। बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक और नया प्रोग्राम लेकर। हाँ, आपका दोस्त, आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अगर आप हमारे को इतना प्यार देते ही हैं तो जताते क्यों नहीं। आपको हमारे प्रोग्राम्स, हमारे गीत या रेडियो विस्तार द्वारा प्रोग्राम पेश किए जाने वाले सभी कार्यक्रम कैसे लगते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बताइए और हमें ये भी बताइए कि किस तरह के प्रोग्राम और कार्यक्रम आप और सुनना पसंद करते हैं, ताकि हम वो बनाएं जिसे आप चाहें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056131010705641310। तो अब अपने रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलता हूँ एक और प्रोग्राम में एक और नया कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और

0: जामुन के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबाला वासी को गर्व।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र

रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है। इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का।

काश तुम होते हमारे इन बहती हवाओं के संग तैरते, हम दोनों पानियों में पत्थर फेंकते, इस पानी को मैं तुम्हारी हथेली में रख कर ताकि अपना अक्स ढूंढ सकूं और माजी के दर्द को चंद पलों के लिए भुलाने की कोशिश करूं। काश तुम हमारी परछाई बन पाते, मैं पकड़ता और तुम भागते, तुम भागते और मैं पकड़ने की कोशिश करता। काश तुम बादल बनते, बरसते और मैं भीग जाता, तुम आकाश के किसी कोने से मुस्कुराते और मुझे इन हवाओं के हवाले करते।

0: रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे
1: चंद अल्फाज इन सांसों को ताजगी बख्श दे। तुम्हारी सुरीली आवाज रूह से बात करती, यकायक जिस्म पिघलते। और जन्म होता फिर से हमारा तुम्हारा इस वादी गुलपोश में। यहां दर्द के इन नखमों को हम अलविदा कहते, नई सुबह के साथ ही इन साजों पे छेड़ते मखमली धुने। तुम्हारी आवाज से आवाज मिलाते शायद एक गीत को हम दोनों जन्म दे पाते, एक नई अदाओ अंदाज के साथ।

खामोशी का एहसास अगर है तो बदलाव लाजमी है। अगर वक्त के साथ साथ हम चलें तो जाहिर है ये आकाश भी हमारी रहनुमाई करेगा। जमीन के हर जुज में तड़प है, कसक है और बेचैनी तारी रहती है। हम जी या मरे, जमीन और आसमान को इससे क्या लेना? सिर्फ यहां की धाराओं में बहना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, यहां कुछ भी हमारा नहीं। खाली आए और खाली जाएंगे, शायद कुदरत का यही दस्तूर है।

आज इन प्यार की बरसातों में कोई तो आए पास बैठे, शायद फिर से ये मन बहल जाए। पिछली रात के पिछले पहर में जब ख्वाब में तुम भीगते हुए आए, रुक गई बारिश, घने बादलों में जैसे चांद दुल्हे का लिबास पहने सितारों की बारात लेकर तुम्हारी चौखट पर दस्तक दे रहा हो, जैसे कह रहा हो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, अपनी पनाहों में संभाल के रखेंगे। तेरा शुक्रिया, आते तो हो ख्वाब में ही

लम्हे हमारे अपने थे जब चांदनी रातों में हम सितारों की दूरियों को नाप लिया करते थे। इनका दर्द समझने की कोशिश करते थे, इन्हें तुम अपने आंचल में छिपा लिया करते थे और इनसे हम कलाम हुआ करते थे। इन चांदनी रातों में हम दोनों इन सितारों को निहारते रहते थे। हमें इनकी खामोशी का एहसास भी हुआ करता था और इनकी सिसकियां हम महसूस करते थे, पर अब ये ख्वाब की तरह है जो हकीकत से कौन सो दूर।

कभी कभी अनजाने हादिसात यूं घेर लेते हैं कि अपने आप को अलग करना नामुमकिन सा लगता है। अचानक कोई आकर दस्तक देकर चला जाता है, जज्बात को ठेस पहुंचाकर। उनके दामन में पनाह लेने की ख्वाहिश, दूर तक साथ साथ चलने की उम्मीद तो जग जाती है, पर पल भर में मिट जाती है यूं ही बेवजह। और हां, बस यही मान के चलना पड़ता है कि सपने कभी सच नहीं होते हैं। सपने तो सपने होते हैं,

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और हम आज के प्रसारण को अब यहां देंगे विराम। आप सुन रहे थे हमारे प्रसारण जो हम करते हैं अंबाला छावनी से, और इस सामुदायिक रेडियो का लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ओर से अंबाला के लिए दिया गया था 1 सितंबर 2023 को। अभी 1 सितंबर 2026 को हमने तीसरी वर्षगांठ मनाई, और ये संभव तभी हुआ जब आप सभी श्रोताओं का प्यार और स्नेह हमें मिलता रहा। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा, और स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। जाने से पहले हम एक खास विषय पर आपसे बात करते हैं, आपको सुनाते हैं आज की पंक्तियां और साथ में कल के कार्यक्रमों का विवरण, क्योंकि ये समय हम आपके साथ बिताते हैं लाइव, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत को अब यही विराम देने का वक्त आ गया है। उम्मीद है कि ये प्रसारण आपके मन को भाया होगा और आपकी शाम को थोड़ा और सुकून भरा बनाया गया होगा। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद और अहम विषय पर, और आज का विषय हमने चुना है, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन में हम अक्सर अपने लिए कमाने, बढ़ने और आगे निकलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन सच्ची इंसानियत तभी झलकती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करना, या फिर किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनकर उससे सांत्वना देना, ये सभी छोटे छोटे कार्य बहुत बदलाव ला सकते हैं। मदद करने के लिए हमेशा बड़ा पैसा या साधन होना जरूरी नहीं, बल्कि सच्ची भावना और नेक इरादा ही काफी होता है। जब हम दूसरों की मुश्किलों में उनका साथ देते हैं, तो न केवल उनका जीवन आसान हो जाता है, बल्कि हमारे अपने मन को भी एक अद्भुत संतोष और खुशी मिलती है। यही भावना जब समाज के हर व्यक्ति में जागृत होती है, तो पूरा समाज, पूरा क्षेत्र और पूरा देश एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, हम सब ये प्रण लें कि अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद जरूर करें, क्योंकि सेवा भाव से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों, ये था आज का विषय, और आप सभी के लिए मैं हर रोज चार पंक्तियां लाता हूं। आज की पंक्तियां आपके नाम जो मैंने की है वो यूं है, जो हाथ बढ़ाए किसी दुख की मदद के लिए, जो हाथ बढ़ाए किसी दुखी की मदद के लिए, वही हाथ असली दुआओं का हकदार बने। जो हाथ बढ़ाए किसी दुखी की मदद के लिए, वही हाथ असली दुआओं का हकदार बने। वितस्ता भी तो बांटती है अपना जल सभी को। जी हाँ दोस्तों, वितस्ता भी तो बांटती है अपना जल सभी को, यही सिखाती है नेकी में ही जीवन संवरे, यही सिखाती है नेकी में ही जीवन संवरे। तो ये चार पंक्तियां आप सभी के नाम थी, और कोशिश करता हूं कि आप सभी को प्रेरणा दूं, आप सभी को हिम्मत दूं, आप सभी को हौसला दूं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने जिंदगी में कोई लक्ष्य चुना है, उस लक्ष्य के लिए कोई शॉर्टकट पाने के लिए नहीं है, आपको निरंतर उस लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है, काम करना है, अग्रसर रहना है, तो आप जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यही उदाहरण है इस एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता का। 36 साल पहले एक युवा कश्मीर से अंबाला आया, और अंबाला में 35 वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा अंबाला की जनता की सेवा की, और एक मन में लक्ष्य था कि अंबाला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं अंबाला को क्या दे सकता हूं। तो एक सोच बनी कि एक आवाज देते हैं जो अंबाला के हर एक व्यक्ति की आवाज बने, और हम पिछले 3 साल से दिन रात काम करते हैं,
और कोशिश करते हैं कि हम आपके जिंदगी के हम सफर बन पाए। हमारे प्रसारण सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक होते हैं, यानी 15 घंटे का हम प्रसारण करते हैं। उसमें हम आपको सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, घर परिवार के बारे में, संगीत के बारे में, कविताओं के बारे में, गजलों के बारे में हम आपके लिए कार्यक्रमों को तैयार करते हैं, आप तक ले आते हैं। और साथ में हम अंबाला के इतिहास के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। क्या बदला पिछले 35-36 साल में अंबाला में? जब मैं यहां पर आया था तब से आज तक मैंने अंबाला की जो उन्नति है वो खुद देखी, मैं खुद उसका निगहबान हूं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में आप ऐसे भी कुछ हमारे इस सामुदायिक रेडियो से अंबाला के बारे में जानकारियां सुनेंगे कि क्या बदलाव हुआ तो कौन उस बदलाव का जिम्मेदार होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको मैं कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 25 सितंबर 2026 शुक्रवार को जो कार्यक्रम आपके लिए हम लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम करते हैं शुरुआत और लाते हैं आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत और कल शुक्रवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल जगत एपिसोड 2। हमारे साथ होंगी नृत्यांगना गुरसिमरत कौर, पेश करेंगे आरजे सेजल। और 8:30 आप सुनेंगे रंगमंच की ओर एपिसोड 1, फिल्म होगी नायक और इसको प्रस्तुत करेंगे मानव मेहरा। ये उन कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा जो कला के क्षेत्र में, खासकर के थिएटर और फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। 9:30 माँ को समर्पित कार्यक्रम माँ अनमोल एपिसोड 2 होगा, पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 10:05 पर वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6 होगा, मीना भट्ट सिद्धार्थ की लिखी गजलों और कविताओं पर। संगीत की सभा जारी रहेगी, कल शुक्रवार है, कल आप पूरा दिन इंतजार करते हैं 2 बजे का, जब आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश आता है। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप हमें बुधवार तक अपनी फरमाइशें हमारे स्टूडियो के नंबर पर भेजें और शुक्रवार को हम जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं 2 बजे उसमें हम आपकी फरमाइशों के ऊपर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो कल 2 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को हम दिन के 2 बजे करते हैं। 6 बजे होगा भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7 बजे होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5, पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है मुझे ले चलो। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जो जानकारी है वो हमें भेजेंगे। अगर आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से अंबाला की जनता का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आप अपने बारे में भी हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर लिखें, हम आपको आमंत्रण देंगे, आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर सभी अंबाला वासियों तक पहुंचाएंगे। और मैं उन व्यवसायियों को भी अनुरोध करना चाहूंगा जो अपने व्यवसाय का विज्ञापन इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि हर एक बात अंबाला, हर एक वासी तक पहुंचाई जा सकती है। तो आप जरूर अपना फीडबैक, अपनी जानकारी हमें भेजिएगा स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर आपको एक बार फिर लिखाते हैं 7056413010। ये जानकारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की है। तो श्रोताओं, यही समेटते हैं आज का प्रसारण और मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और भरोसा है कि ये वक्त आपके साथ अच्छा बीता होगा और आपके दिन में थोड़ी मिठास घोल गया होगा। तो अब भारत सोपोरी आपसे लेता है विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।